You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेश।

0: और ना मैं नींद में गया ना मैं जगा हुआ था, वो एक स्टेट होता ना, एक मेडिटेटिव एक फ्लो स्टेट होता ना, उसमें था और इतना ब्लिसफुल मैं फील कर रहा था.
1: यस एग्जैक्टली यही सेम चीज मेरे साथ हुई. मैं भी जो खिड़की थी उस पे से सर लगाकर जो है बैठी हुई थी, आंखें बंद थी, मुझे लगा था कि मैं सो जाऊंगी.
0: हाँ.
1: बट मैं सोई नहीं. एंड जब मैंने आंखें खोली तब मैं जो है ऑफिस पहुंच चुकी.
0: मतलब धूप को देख के तो यार मेरे मन में यही लगा कि यार ये बहुत प्यारी लग रही है. मतलब एक अलग फीलिंग आ रही थी,
1: एक अलग फीलिंग है, एक अलग कंफर्ट जो है वो इस वक्त की धूप में जो है वो था. तो अगर आप लोग अभी उठ चुके हैं तो प्लीज थोड़ा सा विटामिन डी ले लीजिए, वरना धूप अगर एक बार तेज हो गई
0: तो फिर भाई तो फिर

0: मगर 12 बजे वाले धूप से आप ये नहीं बोलोगे
1: वो प्यारी नहीं लगेगी, फिर वो भारी लगेगी।
0: मतलब जब आप बाहर निकलोगे धूप को कोसोगे तो धूप तो यही बोलेगा। करने के लिए बहुत कुछ है, मैसेज कीजिए भाई 3311063 पर अपने गुड मॉर्निंग कोट्स मैसेजेस भेजिए, अपने इरादे के बारे में बताइए, आज का इंटेंशन क्या है, क्योंकि हर दिन को एक अच्छे इंटेंशन के साथ अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ ही देर में आपके रेडियो सेट में ये वाला गाना भी प्ले होगा।

0: पहेली से याद आया, सवाल भी आएगा आपके पास भाई, तो तैयार हो जाइए। तो यही बोलते हुए हम भी जरा आज के जर्नी को किक स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर 2 का गाना सुनते हैं विशाल मिश्रा और लेजेंडरी तुलसी कुमार की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जी ओबिदास।

0: निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में बर्फी मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 6:20 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आए हैं मैसेजेस। जरा एक एक करके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। मेहरुनिसा जी का मैसेज आया है, लिखा है ऑसम मॉर्निंग सुदेव एंड कशी करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया मॉर्निंग। और आलम भाई का मैसेज आया है, आलम भाई ने लिखा है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह जब कोई
1: ब्यूटीफुल सर मेरे होते हुए उन्होंने ब्यूटीफुल मॉर्निंग लिखा होगा सर।
0: नहीं, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सर लिखा है उन्होंने, बिल्कुल सही बात कही है।
1: गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल एंड सर,
0: नहीं, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सर लिखा है उन्होंने।
1: आलम जी प्लीज स्पेसिफाई कीजिए कि आपने मुझे ब्यूटीफुल बोला है।
0: अब इसमें स्पेसिफाई करने के लिए क्या है, जो बोला सच्ची बोला उन्होंने। और संधू जी का मैसेज आया, लिखा है गुड मॉर्निंग जी हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए। और उसके साथ साथ रिशीन का मैसेज आया है, रिशीन ने एक मैसेज भेजा है, एक फोटो भेजा है और उसमें लिखा है गुड मॉर्निंग हैव एन अमेजिंग डे जियो बिंदास। और फोटो में लिखा है लाइफ इज लाइक अ रोड ट्रिप, एंजॉय ईच डे एंड डोंट कैरी टू मच बैगेज।
1: वाह,
0: बिल्कुल सही बात है, अननेसेसरी बैगेज नहीं उठाना चाहिए, जो नेसेसरी है बस वही उठाना चाहिए। और जुल्फी भाई का मैसेज आया, लिखा है द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट टुडे इज दैट यू गेट द चॉइस टू मेक इट बेटर देन यस्टरडे।
1: एग्जैक्टली,
0: गुड मॉर्निंग करके बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। जुजारू मोटिवेशन जो है अब शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आ चुका है, यहाँ पे लिखा है मे योर डे बी ब्यूटीफुल हैप्पी एंड फिल्ड विद लॉट्स ऑफ लव, गुड मॉर्निंग एंजॉय योर डे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और आपको भी जो है बहुत ही बढ़िया दिन हम विश करते हैं। नाजरीन जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग स्टार्ट फ्रेश थिंक पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: बस इसी मोटिवेशन की तो जरूरत होती है हमें सुबह सुबह, और क्या चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात,
1: तो मैं उठती हूँ और आती हूँ कि यार चलो आज का मोटिवेशन जो है वो मुझे लिसनर से मिल जाएगा।
0: Yes. और साथ ही साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप जेमिनी यूज करते हैं तो जैसे ही आप जेमिनी खोलोगे तो उसमें वेयर वुड वी स्टार्ट या फिर वेयर शुड वी स्टार्ट करके एक बोर्ड लिख के आता है, उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्रिएट इमेज, क्रिएट म्यूजिक, हेल्प मी लर्न, बूस्ट माई डे करके एक टॉपिक आता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सजेस्ट अ हेल्थी मील दैट फील्स लाइक अ ट्रीट, क्यूरेट अ 3-song प्लेलिस्ट टू हाइप मी अप, शेयर सिंपल फन वेज टू इंस्टेंटली डी स्ट्रेस, ठीक है, या फिर राउंड अप सम होलसम न्यूज फ्रॉम टुडे। तो ऐसी सारी चीजें भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए एआई जो है एक टूल है हमारे हाथ में जिसका हमें पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए चमत्कार करने के लिए। तो यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में हम वापस आएंगे सवाल पूछने के लिए ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में, तो तैयार हो जाइए। अभी यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: अनका ही मूवी का गाना हमने सुना के ही की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 6:35 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है सवाल लेकर हम पहुँच चुके हैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई आज का सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, आज के दिन से जुड़ा हुआ सवाल है। आज जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे है।
1: आप हर रोज यही बोलते हो कि आसान सवाल है और सवाल जो है वो मुश्किल निकलता है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सिंपल सवाल है। आज आप ये सवाल सुन के बोलोगे क्या यार सुदेव, थोड़ा आप ऐसे टेस्ट कर सकते थे करके। सवाल है वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है।
1: सुदेव आप थोड़ा टेस्ट कर सकते थे।
0: लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है आपको बताना है। आप मैसेज कीजिए 3311063 पर और बताइए सवाल का जवाब। आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और सही सही जवाब बताइए। देखते हैं कि हम आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से कितने तेज है।
1: इस सवाल का आपने जवाब दे दिया तो आप सच में कशिश से बहुत ज्यादा स्मार्ट है।
0: नहीं नहीं ऐसे नहीं, बट अभी फिलहाल आप जवाब भेजिए। यहाँ पे डेविड मूवी का गाना हम प्ले करते हैं रेखा भारद्वाज की आवाज में। तो जब तक जवाब आ रहा है अपन लोग जाके गर्म पानी पी कर आते हैं। स्टूडियो में बहुत ठंड है,
1: बहुत ज्यादा
0: स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हमने पूछा था सवाल ये था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है। हमारे पास आए हैं मैसेजेस। नेहा जी ने मैसेज किया, लिखा है कि हेलो, इट्स द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, आई हैव बीन देयर, इट्स एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग करके। उसके साथ साथ मुझे जुबैर भाई ने मैसेज किया है। जुबैर भाई ने बोला है कि गुड मॉर्निंग द लूवर पेरिस, जुबैर अहमद करके।
1: ओह माय गॉड,
0: ओके। उसके बाद मुझे संगीता जी ने मैसेज किया है। संगीता जी ने मैसेज करके बोला है, गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशिश, आंसर इज लूवर म्यूजियम इन पेरिस। दिस इज संगीता हियर, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और हमारे पास मिक्स्ड तरीके से आए हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम है, कुछ लोगों ने बोला लूवर म्यूजियम है।
1: Paris.
0: सही कौन सा है इसमें से? अब देखिए, अब है यहाँ का जो डिटेल जो है, लूवर म्यूजियम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है।
1: Ooh.
0: और द ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सिविलाइजेशनल म्यूजियम है। अगर हम इनके साइज के बारे में बात करें तो 70,000 स्क्वायर मीटर जो आता है लूवर म्यूजियम का एरिया। बट अगर हम बात करेंगे इनकी, यानी कि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, तो वो आता है 500,000 स्क्वायर मीटर्स। तो उतना बड़ा है। तो दोनों आंसर सही है, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे स्पेशली बजाएंगे भाई तालिया। तो इसी खुशी में काम करते हैं, गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं। और नेहा जी ने एक और रिक्वेस्ट किया था, बोला था कि अगर मेरा जवाब सही है तो मेरे लिए गाना प्ले कर दोगे। बिल्कुल प्ले करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए यहाँ पे। अभी फिलहाल के दो दीवाने शहर में स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

रखती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश,
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं। और हम जरा मौसम का हाल देख लेते हैं।
1: आपने ताला फॉर रीजन नहीं किया?
0: वो तो है ही भाई, मतलब अब तो नॉर्मल सी बात हो चुकी है, बट टू बी ऑनेस्ट हम सब यही चाहते हैं कि भाई तला आ जाए यार, एक बार जो है आ जाए, खेल ले, बल्ला पकड़ ले, ग्राउंड में आ जाए, दिल खुश हो जाएगा हमारा। आज का अभी का जो टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री सेल्सियस, और आज का लोवेस्ट टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेल्सियस ही है, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। हवा बह रही है 17 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा हमें उड़ा के तो नहीं ले जाएगी।
1: देखिए सुदेव, किसी भी हवा में इतना दम नहीं कि वो आपको और मुझे उड़ा के ले जाए।
0: मतलब आप मुझे वेट शेम कर रहे हो या खुद को?
1: हम वेट शेम की बात है ही नहीं यार, इतनी हवा में दम है ही नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, वैसे ठीक है,
1: पर
0: तो
1: हाँ
0: मतलब
1: पर
0: आप
1: पर
0: हवा
1: पर
0: को दम शेम कर रहे हो?
1: यस, मैं हवा को दम शेम कर रही हूँ। बट कल जो है हम बाहर गए हुए थे,
0: अच्छा,
1: एंड वहां से जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इतनी तेज हवा बह रही है, इतनी तेज हवा बह रही है कि गाड़ी का मैंने गेट खोला तो मैंने थोड़ा सा खोला था, लेकिन वो पूरा खुल गया।
0: वाह, ये बहुत
1: इतनी तेज हवा चल रही थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरा लेदर वाला जो

0: कुछ नहीं बता सकते उस मामले में, हम स्पीचलेस हो जाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे आशिकों की कॉलोनी मूवी का गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप भी अपनी फोटोज जो हैं बाहर की जरा क्लिक कीजिए, दिखाइए अपने कैमरा के लेंस के थ्रू की बाहर की दुनिया कैसी है।
1: वॉलपेपर वर्दी फोटोज क्या है ये, हम ये स्टूडियो में बैठे बैठे यार बाहर का कुछ माहौल दिखता नहीं है। आप लोगों की नजरों से अगर दिख जाएगा तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, करम हो जाएगा आपकी। अरे
0: बड़ी बात कर दी यार,
1: रोना जाता है मुझे तो कई बार।
0: चलो आप रो कराओ, यहाँ पे गाना प्ले करते हैं।

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
5: जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसूस।
0: स्टेशन क्लॉक में 7:22 जो है होने वाले हैं और यहाँ पे हमारे पास थोड़े फोटोज आए हैं। मनोज भाई ने हमें एक फोटो भेजा है, उसके नीचे लिखा है टुडे इन दिस हॉट सीजन आई एम रिमेम्बरिंग माई होम टाउन देहरादून, और बहुत ही प्यारा एक फोटो भेजा और वो फोटो देख के अपने मन में तो
2: ये हंसी वादियां ये खुला आसमान
3: आ गए हम कहां मेरे साजना।
0: भाई मतलब इतना बढ़िया फोटो, एक माउंटेन दिख रहा है धुंध, मतलब वो देख के खुश।
1: यस, ओस दिख रही है, मतलब दिखती नहीं है बट वो दिख रही है एंड एक गाड़ी खड़ी हुई है पहाड़ के ऊपर। ओए हाय हाय हाय यार, सच में मतलब समर वेकेशन में वो जो जाते थे ना छुट्टियों पे,
0: जी,
1: वैसी
0: जी,
1: वाली फीलिंग मुझे याद आ गई। अरे यार
0: बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली देहरादून में कुछ टाइम रहा हूँ, 2-3 महीने, और वो भी एक मार्च अप्रैल मई के टाइम पे, मई तक मैं वापस आ गया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी बढ़िया एक एम्बियंस था वहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, कैसे हैं आप दोनों? सामी भाई ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया खैरियत में, आप बताइए क्या हाल है कैसा है। और उन्होंने भी काफी प्यारा एक फोटो भेजा है, मुझे लगता है कि इन्हें बोगनविले के साथ ना एक अलग प्यार है।
1: नहीं, उनको पता है कि मुझे अब बोगनविले पसंद है,
0: क्या बात,
1: तो इसीलिए वो बोगनविले की फोटो भेजते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: जो कि देखो यार कलर ऐड करता है, मतलब पहले जो है आसमान सुरमई होता था, अब जो है आसमान इतना ब्राइट हो गया तो कुछ कलर तो चाहिए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस इसलिए कलर ग्रेडिंग करके इन्होंने अब बोगनविले की फोटो भेजनी शुरू।
0: अबरार भाई ने फोटो भेजा, उसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, काइंडनेस रिटर्न्स इन ब्यूटीफुल वेज, समटाइम्स एक्सपेक्टेड Often surprising, keep giving kindness करके। बिल्कुल सही बात है, काइंड रहना नॉर्मल चीज है, रहना चाहिए सबको। और मैं तो थोड़ा अचंभित हूँ आज की इदरीस भाई का मैसेज नहीं आया। इदरीस भाई क्या हो गया, मतलब
1: ठीक तो है ना,
0: ठीक तो है ना, फोटो नहीं आया, थोड़ा हम भी ऐसे चिंतित हो गए,
1: चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसे आप लोग हो जाते हैं कि अगर कभी सुदेव गायब हो जाते हैं या मैं गायब हो जाती हूँ, तो वैसे ही आप जल्दी से मैसेज कर दीजिए, बस आपके मैसेज का इंतजार है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से मैसेज कीजिए और यहाँ पे गाना

0: और थोड़ी देर में आपके रेडियो सेट में जेम्स की आवाज में ये गाना भी आएगा।
1: भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है।
0: बहुत क्यूट हो गया ना गाना, मैं क्यूट नहीं बोलूंगा बट इस गाने का एक अलग इंटेंसिटी है।
2: जिसका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ उसको भी रुला दिया, उसको भी याद आ गई किसी की।
0: अब थोड़ा
2: किसी और के पहले प्यार को याद करके रो रहा है वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके दोस्त के जो ब्रेकअप के बारे में सुना था
2: एक बार।
0: तो कोई बात नहीं, अगर ब्रेकअप की बात हो ही गई है तो फिर ये भी सुनिए। क्या राज खोलेंगे ये तो आपको इंतजार करके ही पता चलेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि फिट है तो हिट है में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट्स प्ले करते हैं और कहते हैं
2: जियो बिंदास।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी गसुस।
0: और यहां पे वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
2: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो देखिए, हम सब जानते हैं कि बैठना जो है उतना अच्छा नहीं है। अगर हम ज्यादा देर तक बैठते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, तो हमारे बॉडी पर जो है टोल लेता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उससे आ जाते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम के बारे में जो हम बात करेंगे, हिप फ्लेक्सर्स के बारे में। एक्सेसिव सिटिंग कैसे हमारे हिप फ्लेक्सर्स को टाइट कर देती है। ठीक है, हिप फ्लेक्सर्स क्या है पहले वो बता देता हूँ। हिप फ्लेक्सर्स वो मसल है जो हिप्स और थाइस को कनेक्ट करते हैं और वॉकिंग, रनिंग और पोस्चर मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब लॉन्ग आवर्स तक हम बैठते हैं, वो भी कंटिन्यूअसली, तो ये मसल्स जो है शॉर्टन पोजीशन में रहते हैं। अब रिसर्च ये दिखाती है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग से हिप फ्लेक्सर्स ग्रेजुअली टाइट और स्टिफ हो जाते हैं, वीक भी फील हो सकते हैं डिस्पाइट टाइटनेस, और पेल्विस को फॉरवर्ड पुल कर सकते हैं। इसका इफेक्ट होता है लोअर बैक पेन, पुअर पोस्चर, वॉकिंग या स्टैंडिंग डिस्कम्फर्ट और रिड्यूस्ड मोबिलिटी। ये स्पेशली अगर हम डेस्क जॉब्स या फिर लॉन्ग स्क्रीन टाइम वाले लोग हैं, तो इन सब में सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही कॉमन है।
1: बिल्कुल, देखिए अब गुड न्यूज ये है कि इसको सिंपल हैबिट से जो है आप ठीक भी कर सकते हैं। हर 30-60 मिनट में जो है आप उठकर एक वॉक ले लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, ग्लूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, स्टैंडिंग ब्रेक्स ले लीजिए। मतलब आप खड़े खड़े जैसे बैठने का ब्रेक लेते हैं, वैसे बैठे बैठे जो है वो खड़े होने का ब्रेक जो है वो भी ले सकते हैं। ये मसल्स को नॉर्मल मूवमेंट रेंज में जो है वापस लाने में हेल्प करता है। और अगर शॉर्ट में बात करें तो ज्यादा सिटिंग हिप्स को जो है लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन में जो है रख देती है, जो मूवमेंट और स्ट्रेचिंग से जो है रिसेट हो सकता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका काम जो है ऐसा है कि आपको एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठना है, तो हर आधे घंटे में या फिर एक घंटे में उठिए, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, फिर काम कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिफ्रेश भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ बॉडी भी थोड़ा रिसेट करेगी।
1: एग्जैक्टली,
0: और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश,
0: और यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्थ जीसीसी गेम्स दोहा 2026 के बारे में, जहाँ पे एथलेटिक्स का कैंपेन जो है जबरदस्त तरीके से फिनिश किया और ओवरऑल मेडल टैली में 100 के पार जो है कतर पहुंच चुकी है। तो कतर ने अब टोटल जो है 109 मेडल्स के साथ टॉप पर अपना प्लेस जो है सेट कर लिया है। 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है कतर के पास हैं। सेकेंड पोजीशन में है सऊदी अरेबिया विद 61 मेडल्स और थर्ड पोजीशन में है बहरीन विद 54 मेडल्स। और इसके साथ अगर हम देखें तो एथलेटिक्स टीम ने अकेले ही 34 मेडल्स जीते हैं।
1: वाओ, यानी 12 गोल्ड, 13 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज।
0: यस, जो एथलीट्स के स्ट्रांग परफॉर्मेंस को दिखाता है। और एथलेटिक्स के फाइनल डे पर कतर ने 9 मेडल्स जीते, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और जीसीसी एथलेटिक्स में फर्स्ट प्लेस जो है सिक्योर किया है। काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो है एथलेटिक्स में
1: कतर ने दिखाया है। एंड मुझे जो है उम्मीद थी कतर से, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा ये मुझे सच में नहीं लगा था।
0: टाइट हमें लगा था, मगर ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे निकल गए। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 8:16 हो रहे हैं और मैचेस के बारे में हम बात करना चाहेंगे।
1: yes.
0: कल जो है बेंगलोर ने मैच जीत लिया है।
1: या देखो, मैं तो ना ये देख रही थी कि कल जितने भी मतलब बाकी टीम्स के फैन हैं वो भी ये विश कर रहे थे कि यार बैंगलोर जीत जाए,
0: क्योंकि चेन्नई ऊपर आ जाएगी ना।
1: यस, मतलब ये मीम्स जो है अब इंटरनेट पे चलने लग गए हैं और मैं ही काफी सारे मीम्स जो है वो सुदेव को शेयर करती हूँ कि
0: जी
1: अब जो है सारी टीम्स इस कोशिश में लगी है कि चेन्नई जीत जाए, बट चेन्नई वो कोशिश नहीं कर रही है।
0: अरे प्लीज कर लो यार। ना देखिए, मैं जैसे कि मैंने बोला कि कोशिश तो देखो पूरी कायनात कर रही है, बस जिसे करनी चाहिए वही कर रहा है, तो हो जाए भाई लोग, प्लीज कर लो। yes, कोशिश कर लो।
1: कोशिश पे बात करेंगे हम थोड़ी सी देर में, लेकिन कल पंजाब और बैंगलोर का पहला मैच था, मतलब पहला जो मैच था वो बैंगलोर और पंजाब के बीच में था। एंड पंजाब ने जब पहले मैच में, जो पहला मैच हुआ था बैंगलोर के साथ, उसमें एक बार बैंगलोर को हराया था और उसके बाद ऐसा टाइम शुरू हुआ है पंजाब का कि बेचारी हारती जा रही है। सो मैं बात करूं, सो बैंगलोर जो है वो जीत गया है एंड रिजल्ट जो है वो बैंगलोर के फेवर में था। 23 रन से बैंगलोर की जीत हुई थी। दूसरा मैच जो था वो राजस्थान और दिल्ली के बीच में था, जिसमें जो है दिल्ली जीत गई। टॉस भी दिल्ली ने जीता, एंड गेम भी दिल्ली ने जीता।
0: और बैंगलोर के मैच में स्पेशलिटी ये है कि वेंकटेश अय्यर जो हैं, जो गए थे बैंगलोर में, बहुत टाइम से खेल नहीं रहे थे क्योंकि बैंगलोर का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो अच्छे से वर्क कर रहा था, वो चेंजेस नहीं आ रहे थे। और उन्होंने कल अपना पहला मैच खेला है सीजन का। और भाई, धमाकेदार परफॉर्मेंस
1: दिया, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भी बने, एंड बहुत बढ़िया लगा हमें देख के कि काफी टाइम बाद इनको खेलते हुए देख रहे हैं। अब होप जो है और बढ़ती जा रही है। देखो
0: जी जी जी जी, और हम बात करते हैं राजस्थान और दिल्ली की।
1: देखिए यार, जब भी अच्छी बात होती है ना बैंगलोर के बारे में, ये इंसान स्किप टू द
0: नहीं अच्छी बात। मैंने शुरुआत इसी से की थी कि बैंगलोर जीत गई करके, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते
1: हैं? आपने बैंगलोर जीते कितने बुरी तरीके से बोला था। हाँ, तो कल के मैच में बैंगलोर जीत गई। अगर वही भी चेन्नई जीते तो कल के मैच में चेन्नई जीत गई, ऐसे बोलते हैं।
0: अब देखिए वो तो फर्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो जिस बंदे को गुलाब जामुन पसंद है वो रसगुल्ले को थोड़ा एंजॉय करेगा।
1: तो गुलाब जामुन रसगुल्ला,
0: ठीक है। तो दिल्ली और राजस्थान के मैच में अगर हम देखें तो दिल्ली ने जो है मैच जीत लिया 5 से। दिल्ली ने बहुत ही अच्छा खेला, 197 जो उन्होंने स्कोर किया। एक्चुअली राजस्थान ने 193 का ही टारगेट दिया था, दिल्ली ने एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हुए काफी बढ़िया खेल लिया।
1: Yes.
0: और मैच जो है अपने हाथ में कर लिया है। अगर हम टेबल की बात करें, आईपीएल टेबल की बात करें, तो चेन्नई के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन है। यहाँ से अगर वो चाहे सारे मैचेस अपने जीत जाए तो ऊपर जा सकती है, और बाकी बचे हुए टीम्स अपने सारे मैचेस हार जाए, मतलब नीचे जो टीम्स हैं वो हार जाएं
1: तो, और वो हारने के लिए ही खेल रही हैं वो। अभी तक इस टूर्नामेंट में है ही इसलिए कि एक बार चेन्नई आ जाए ऊपर, फिर हम हारेंगे,
0: फिर हम देखते हैं। फिर अपना तो हो गया, देखो हमारा तो
1: चेन्नई जो है वो जो है क्वालिफाई नहीं करेगी, हम डिस्क्वालीफाई होंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज द थिंग,
0: ये ऐसा चल रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, अब आज के मैच में क्या होगा, आज किस किस के बीच में मैच है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लकी अली सुनता सारथी की आवाज में हमने युवा का गाना सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक गाना सुन रहा था, मतलब ऑफ एयर में और कशिश बैठ के गाना सुन रहे थे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, उसका एक कवर वर्जन हम सुन रहे थे। तो एकदम से ना मेरे मन में एक थॉट आया कि यार कभी कभी ना कुछ गाने सुन के, कुछ गजल सुन के तुम्हें मन करता है कि तुम गाना सीखो। ऐसा नहीं कि तुम वो गाना सीख के कहीं पे गाना गा के डालो, इसलिए नहीं,
1: बस खुद के लिए,
0: खुद के लिए, वो उसकी ब्यूटी में ऐसे रजने के लिए ना कि वाह यार क्या मस्त कॉम्पोजिशन है।
1: एग्जैक्टली। और मैं और सुदेव कई बार ये बात भी करते हैं कि बस 0.5% भी इसका गाना आ गया, हमें जैसा ये आर्टिस्ट गा रहे हैं, तो बस हम उतने में ही खुश हैं, हम खुद को गाना सुना के खुश रहेंगे।
0: और कई दफा मैंने सुना है बहुत लोगों को बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया में इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं जो फेम नहीं चाहते, वो म्यूजिक के ब्लिस में ही खोना चाहते हैं, उस ब्लिस में ही अपने आप को रखना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक जो बहुत ही मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट है सिद्ध श्रीराम करके, बहुत फेमस आर्टिस्ट है साउथ इंडिया में, बहुत सारे गाना उन्होंने जो है गाया है, आपने शायद सुना होगा, क्या से क्या हो मैं, वो कौन सा गाना था आई का, हाँ उसका जो तमिल है उसमें एक्चुअली सिद्ध श्रीराम ने गाया है।
1: ओके।
0: तो सिद्ध श्रीराम का जो लाइव परफॉर्मेंस है यूजुअली एक कॉलेज ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आता, वो एक म्यूजिक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है।
1: राइट।
0: रीजन ये है कि बंदा अपने म्यूजिक के ब्लिस में इतना खो जाता है कि कॉलेज वाले तो ऐसे नाचने के लिए आते हैं, बट बाकी जो म्यूजिक लवर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वही होता है कि भाई कभी कभी किसी आर्ट के ब्लिस में खोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक बात जो है विराट कोहली ने भी बोली रिसेंटली, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट 2027, तो उन्होंने बोला कि या आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, मेरा काम ही यही है, मतलब मैं अभी भी नीट खाना खाता हूँ, मैं हर दिन वर्कआउट करता हूँ, और nowadays when I am going out there, it's not to prove anything to anyone. मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है कुछ, I'm just going there because I love the game.
1: Yes.
0: मुझे खेलना पसंद है, मुझे बैट करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैटिंग करना। तो when you start doing something for the love of it, तब तुम एक अलग लेवल के एक efficiency में जाते हो, एक अलग लेवल के enjoyment में जाते हो।
1: Yes, सब कोई competition नहीं रहता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा आर्ट होता है।
0: Yes. So, इसलिए आज चेन्नई के मैच में अगर चेन्नई हार भी जाती तो कोई बात नहीं।
1: यार देखो आज के मैच के साथ बहुत सारी स्पेकुलेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रैना जो है, सुरेश रैना जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे थे
0: चेन्नई की,
1: वो जो है वो चेन्नई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं।
0: अच्छा।
1: एंड ये कहा जा रहा है कि वो शायद इसलिए पहुंचे क्योंकि थाला का यानी MSG का जो है शायद आज लास्ट मैच हो सकता है। एंड काफी सारे लोग जो है वो MSG की पिक्चर्स को जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये भी कह रहे हैं कि ये है उनका प्लेइंग लुक, मतलब जब भी वो इस लुक में आते हैं यानी वो खेलने वाले होते हैं। सो आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज MSG जो है वो फील्ड पे उतरे एंड खेलने के लिए उतरे। आज हैदराबाद और चेन्नई के बीच जो मैच है, अगर हम बताना भूल गए आपको तो हम बता देते हैं,
0: चेन्नई और हैदराबाद का मैच है, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोला तो ये जा रहा है कि हैदराबाद जीतेगी, जो चांसेस ज्यादा भी है, मगर चेन्नई के और टॉप ऑर्डर ने अगर अच्छा खेल लिया तो मैच पलट सकता है। स्पेशली संजू सैमसन से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, ऋतुराज गायकवाड़ से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, शिवम दुबे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये तीन प्लेयर्स अगर बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बल्ले को चला लेते हैं तो फिर चेन्नई बहुत ही मैसिव टारगेट जो है स्कोर कर सकती है। और बात आती है चेन्नई के बॉलिंग के बारे में, मैच भी मुझे लगता है चेन्नई में ही हो रहा है, तो चेन्नई के बॉलर्स को सूट करने वाला ट्रैक ही है, प्रोवाइडेड हैदराबाद के जो प्लेयर्स है एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, काफी बढ़िया बैट्समैन है, उनको रिदम मिलने से पहले ही आउट करना बहुत क्रूशियल रहेगा अगर चेन्नई ये मैच जीतना चाहती है तो। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर चेन्नई के टॉप ऑर्डर ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, वो बराज जो है पैट कमिंस का और बाकी बॉलर्स का सह लिया और अच्छे एक पोजीशन में आगे रिदम में आगे, तो दे कैन डेफिनेटली पोस्ट बिग स्कोर्स एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। सारी कायनात तो कोशिश कर ही रही है,
1: सारी टीम, सारी कायनात कोशिश कर रही है चेन्नई जीते, बस चेन्नई थोड़ा सा और दम लगा दे
0: हाँ
1: तो बस हो जाएगा यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सिनेमैटिक क्लाइमैक्स हम चाहते हैं।
1: बीइंग कि कोई और टीम का फैन, ठीक है मुझे वर्ड नहीं आ रहा था उसके लिए, बट बीइंग अ कोई और टीम का फैन, बीइंग अ बैंगलोर फैन भी मैं चाहती हूँ कि चेन्नई जो है वो जिस तरीके से खेल रही है प्लीज वो थोड़ा सा आगे आए एंड एक और मुकाबला हमें बैंगलोर और चेन्नई के बीच में देखने को मिले, फिर जो हो वो क्रिकेट की जीत होगी यार।
0: बिल्कुल
1: एक बार देखना है यार, अच्छा जब एक कुछ ऐसा मैच होता है ना, एक टूर्नामेंट होता है तो मजा आता है देखने में, एंड इस वो मजा आ रहा है, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्लियर हो जाता है कि यार ये टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है, ये टीम जीत जाएगी, बस तो फाइनल का इंतजार होता है, बट इस बार सच में समझ नहीं आ रहा है क्योंकि टेबल बहुत अजीब सा चल रहा है,
0: बहुत ज्यादा अजीब सा चल रहा है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, जब तक है जान मूवी का गाना सुनते हैं रब्बी शेरगिल की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑल 106.3 FM।
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में कलंक मूवी का गाना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मगर एक चीज नहीं है। और वो चीज जो फर्स्ट क्लास नहीं है वो है एआई को लेके लोगों का माइंडसेट। देखिए जब एआई ऐसे बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो ही चुका है, तो एक आर्टिकल मैंने रिसेंटली पढ़ा था जहां पे एक फोटो ऐसे मैंने देखा, उस फोटो में दिखाया गया था कि पीपल हु डोंट यूज एआई, उसके नीचे लोग डिस्कस कर रहे हैं एआई इज अमेजिंग, इट इज सो गुड, इट इज सो नाइस, यू नो एआई कैन रिप्लेस दिस पर्सन, ठीक है, ऐसे करके सब ऐसे बातें चल रही है। और उसके नीचे वाले पोर्शन में पीपल हु यूज एआई एवरी डे, उसके नीचे लोग लिख रहे हैं, मतलब जो लोग एआई यूज करते हैं, अरे यार दिस इज हैलुसिनेटिंग, ओके दिस आउटपुट इज गुड बट इट नीड्स टू बी रिफाइंड, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जो है जो एआई को डेली बेसिस में यूज करते हैं, अपने काम के लिए यूज करते हैं, वो जानते हैं कि भाई एआई का आउटपुट जो है परफेक्ट आउटपुट नहीं होता। इवन जिन लोगों ने एआई बनाया है, जो लोग एआई के साथ डील करते हैं बनाते हैं, उन्होंने भी बोला कि ये हैलुसिनेट कर सकता है, इससे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप इसके आउटपुट पे कंप्लीटली रिलाई मत कीजिए, ये तो कई बार बोला है, बट बात ये ना कि हम अपने कन्वीनियंस के नाम पे सारी चीजें भूल जाते हैं।
1: यस आई एग्री, मतलब कई बार हमारे साथ भी हुआ है यार कि हमने जो है कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हो एंड वो इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे गलत है, क्योंकि चैट जीपीटी या किसी भी एआई का सोर्स क्या है,
0: इंटरनेट
1: है, तो अगर किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी वो उसको सही इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो है वो आपको दिखा देगा। सो एआई पे हम पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते, एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार एआई तो जो है मतलब एक ह्यूमन की तरह सब जनरेट कर सकता है, कोड कर सकता है, लेकिन लूपहोल जो है वो एआई में भी होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं, पता किया जा सकता है कि ये एआई है या नहीं है। एआई से लोग जो है काफी एड्स बना रहे हैं, काफी सारे सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये अलग से लग रहा है एआई से बना हुआ।
0: और एक और चीज मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले से मैं यूट्यूब में हर दिन सुबह उठ के ऐसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता था, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते थे, मैं वो सुनता रहता था, बट समहाउ आई रियलाइज्ड कि यार ये सब एआई जनरेटेड सॉन्ग्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने एक दिन जस्ट ऐसे ही बहुत दिनों बाद मैंने ड्वॉलर करके एक म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट है, क्लासिकल गिटारिस्ट है, मैंने उनका म्यूजिक सुनना शुरू किया, एंड आई रियलाइज्ड कि यार जब एक खुद इंसान बैठ के वहां बजाता है तो चाहे वो वीडियो के थ्रू ही हम सुन रहे हैं मगर हमें अच्छा बहुत लगता है, वो अलग तरीके से टच करता है, ठीक है। मशीन आपके लिए बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, आपका जिंदगी का भार जो है कम कर सकती है, आपके लाइफ को आसान कर सकती है, मगर वो कभी भी एक चीज को फुलफिल नहीं कर सकती, वो है ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन कनेक्शन। यही एक चीज है जो हमें सबसे रेयर बनाती है सारी स्पीशीज में, जो कनेक्शन हम महसूस करते हैं। कभी कभी हमने सुना होगा कि कोई बंदे YouTube में या फिर Instagram में किसी को गाते हुए हमने सुना और हमें अच्छा लग जाता है, ऐसा नहीं कि वो गाना हमने पहले कभी सुना नहीं, वो गाना हमने कई बार सुना है, मगर उस बंदे की आवाज में या फिर उस लड़की की आवाज में या फिर उसके तरीके में कुछ एक ऐसा होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता नॉर्मल तरीके से, उसे बस महसूस किया जा सकता है।
1: आई अग्री। और एज एन आरजे अगर हम बात करें, सो हमारा भी तो यही काम है ना, लोग आजकल एआई से बात कर रहे हैं, बट काफी सारे लोग आके हमें मैसेज करते हैं कि यार आज आपसे बात करके हमारा मूड ठीक हो गया, या आज आपकी आवाज सुन के, या आज क्रिकेट के बारे में जो सुधीर ने बात करी वो देख के क्रिकेट में इंटरेस्ट फिर से जाग गया।
0: बिल्कुल,
1: एआई भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट हम जो ह्यूमनली टच दे पा रहे हैं वो मैटर करता है, एंड ये एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता।
0: और ये बात सुन के भाई एआई भी बोला,
2: जो भिड़ा तेरे नैनों से काका तो आशिक सरेंडर हुआ।
0: और देखिए इसको कहने का एक और तरीका है,
1: यस,
0: जो एसआरके ने बोला है,
2: तू

0: Which brings me to the biggest, क्या कहते हैं, realization that Bollywood के आधे गाने एक ही बात बोलते हैं, बस वो अलग अलग
1: तरीके से बोलते हैं।
0: अभी यहाँ पे फिलहाल हम तू जरूरी सुनते हैं सुनिधि चौहान और शारिफ की आवाज में। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जी अविनाश।

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है आपको बताना चाहेंगे। ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश कर ही दिया कि आज जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे है।
1: यस।
0: और उसके चलते हुए कतर में जितने भी म्यूजियम्स है वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं और जहाँ पे आप जाके वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, गाइडेड टूर्स जो है एंजॉय कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस एंजॉय कर सकते हैं, फिल्म्स एंजॉय कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं, वो भी फ्री एडमिशन के साथ कतर म्यूजियम के हर वेन्यू में। जैसे कि आप म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स जा सकते हैं, उसके साथ साथ अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में जा सकते हैं, 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में जा सकते हैं जहाँ पे आप जो है उस म्यूजियम के ऑफरिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए यार, सीखने का बहुत बढ़िया तरीका है,
1: exactly.
0: जानने का बहुत बढ़िया तरीका है।
1: अगर आप मेरी तरह एक इंसान है जो अभी अभी कतर आया है, जैसे ज्यादा कतर एक्सप्लोर नहीं किया है या मतलब बस कतर को एक अलग ढंग से देखना है, एक अलग नजरिए से देखना है, तो आज का दिन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तुरंत से पहले, क्या बोलते हैं, तत्काल प्रभाव से
0: तुरंत से पहले
1: जितने म्यूजियम आप एक्सप्लोर करने जा सकते हैं उतने करके आइए, क्योंकि बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज जो है वो भी हो रही है। मैं पिछले एक हफ्ते से जो है प्रोकैस्टिनेट बोलते हैं
0: प्रोकैस्टिनेट
1: कर रही हूँ कि मैं जो है आज किसी ना किसी म्यूजियम में जाऊंगी एंड वहां से कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊंगी जो मुझे आगे अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो कोई एक एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई नॉलेज वाली बात हो या कुछ ऐसा हो। सो आपने जो है आज कौन सा म्यूजियम एक्सप्लोर किया या आप हमें कल जरूर बताइएगा, या कौन सा जाने वाले हैं या आप कौन से म्यूजियम गए हुए हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए इतने सारे ऑप्शन में से चूज करने के लिए। 3311063 ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आइए मैसेज कीजिए
0: और बताइए कशिश को जरा रेकमेंड कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और मुझे मैसेज आया है जहाँ पे लिखा है, गुड मॉर्निंग सुदेव भाई, एक बार हौसला बढ़ा दो हैदराबाद वाले सपोर्टर का भी यार, देखिए दिल पे पत्थर रखे हम जो है बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिसनर ने अगर बोला है हौसला बढ़ाने के लिए तो हम बढ़ाएंगे, आई ने बोला करने का तो करने का।
1: और बिल्कुल हमारे तो एआई ने भी कह दिया है कि हैदराबाद जो है आज उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। सो देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि हैदराबाद बिल्कुल जीत सकता है, हमारा क्यूटी जो है वो सपोर्ट

0: ऐसा लग रहा है कि सूरज खुद नीचे उतर कर आ चुका
1: yes.
0: है। मतलब तिल मिलाते हुए, पिल पिलाते हुए, झमझमाते हुए।
1: यार पिल पिलाते हुए तो मत बोलो एटलीस्ट। पिल पिलाते हुए क्या होता है? ऐसा लग रहा है क्या आम लेने गए हो यार? लेकिन नहीं यार, ये वाला थोड़ा पिलपिला सा, ये नहीं लेंगे।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। सो मेरी गलती, मैं वो पीला ड्रेस देख के पिलपिला सा हो गया था एकदम से। तो इतनी रोशनी एकदम से मेरे सामने आ रही है कि मैं क्या बताऊं, मेरी आंखें जो है चौंधिया गई
1: है।
0: हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाई बीम मार दी आंख में, इतनी रोशनी। मतलब
1: रोशनी ही रोशनी।
0: मैं बताता हूँ लोगों को क्या हो रहा है। तनीषा जो है स्टूडियो में आके yes. बैठी थी यहाँ पे, तो मैं कई बार तनीषा को बोलता हूँ कि आप ऐसे बाहर मत निकलिए, सन को टैनिंग हो जाएगी
1: yeah.
0: पता चला कि सन में भी डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं। क्यों? तनीषा को देख लिया था।
1: तनीषा जो है वो ऑफिस से बाहर निकलती है और सूरज जो है वो सनस्क्रीन लगाने लग जाता है। SPF 80 लगा रहा है, वो मैरिनेट हो रहा है वो सनस्क्रीन।
0: 80 में भी कुछ नहीं हो पा रहा उसका भाई। ATV ऐसे पिघल रहा है जैसे कि वो क्या रहा है।
1: सन की भी गर्लफ्रेंड जो है वो बोल रही है कि देखो मैंने कहा था ना।
0: इसी से बच के रहना चाहिए। बढ़िया, यहाँ पे तनीषा के बारे में बातें जो बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं।
1: नहीं, अब ये काम की बात हो गई।
0: मजाक कर रहा था मैं। ओके गाइज, तो एक बहुत ही प्यारी बात जो हम आपके साथ शेयर करना yes. चाहेंगे। हम छोटा सा एक गेम जो आपके साथ खेलना चाहेंगे, एक गाना मैं अभी सुनाऊंगा, उस गाने से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सवाल का सही जवाब दिया तो आपके पास मौका है बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस जीतने का, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस करने का।
1: yes.
0: वो क्या है, कैसा है, सब डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
2: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
0: तो एक गाना मैं सुनाऊंगा अभी, वो गाना सुनिए आप और हमें बताइए जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब क्या है। शुरू करें?
1: यस, कान और ध्यान लगाकर सुनिए जरा।
0: क्या बात कर दी, इतनी बड़ी बात आई।
3: गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो।
0: एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, ये गाना गाया है लेजेंडरी अनु मलिक ने।
1: yes.
0: सवाल ये है कि ये गाना कौन से मूवी का है।
1: Ooh.
0: कौन से मूवी का गाना है ये आपको बताना है। मैसेज करिए 3311063 पर और बताइए सवाल का जवाब क्या है। और अभी यहाँ पे एक मैसेज आया है, वैसे आसिफ भाई ने मैसेज किया। आसिफ भाई ने पता क्या लिखा है? आसिफ भाई ने लिखा है, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: कशिश की वॉइस सुनने के बाद धूप लगती नहीं। आए, आए, क्या बात कर दी आपने। दोपहर को भी कशिश की आवाज सुन के ही जाना, लू भी नहीं लगेगी।
1: yes.
0: बट थैंक यू सो मच भाई मैसेज करने के लिए। यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी। और यही बोलते हुए गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: ये गाना हर जनरेशन में फिट बैठता है। तुम जेन जी हो, मिलेनियल हो, बूमर हो या फिर जेन अल्फा हो, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना, क्योंकि हर जनरेशन के मन में यही अल्फाज चलता है कि भाई हम तो नए लोग हैं, हम क्यों पुरानी चीजें फॉलो करें, है ना। सही बात कही है मैंने? क्या हो गया, ऐसे क्यों हंस रहे हो आप?
1: कुछ नहीं, मुझे आपका ये कहना समझ आ जाता है यार।
0: कैसे?
1: आप खुद को नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बड़े बड़े बड़े, ये गाना तब निकला था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।
1: एग्जैक्टली।
0: मगर आपने नोटिस किया, आपके पैदा होने के बाद कंसिडरेबली बॉलीवुड में टैलेंट की, मूवीज की और गानों की क्वालिटी में बहुत कमी आई है।
1: यस एग्जैक्टली, क्योंकि सारा टैलेंट जो है वो तो यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है ना लोगों से।
0: एग्जैक्टली, 1997 में जो पैदा हुआ था।
1: एक्सक्यूज मी, 2003 में जो पैदा हुआ था, यानी अच्छा, मैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 2003 में पैदा हुए थे आप?
1: या
0: 2003 में फर्स्ट क्लास में था मैं।
1: Oh my God! फर्स्ट क्लास में होकर ये जो थर्ड क्लास वाली बात आपने की है।
0: ये क्लास के बीच में जो आपने वही ये राइम जो बनाया है, बहुत नया फ्रेश है।
1: थैंक यू, आपसे सीख रही हूँ।
0: काफी फ्रेश आइडिया है। मुझसे क्या सीख रहे हो, संकट में तो आप तनी जाके रहते हो।
1: तो अच्छी चीजें सीख रही हूँ।
0: हाँ सीख रहा हूँ मुझे। वैसे यार मैंने सुना था कि आप अंग्रेजी सीखने के लिए तनीषा के पास गए, क्या हुआ?
1: हाँ, पर उन्होंने मुझे बोला कि तुम सुदेव के साथ रहती हो, तुम्हारी वैसी बिगड़ी हुई है, और हेल्प नहीं कर सकती।
0: अच्छा ठीक है, खौसा बोल के दिखाओ।
1: खौसा
0: क्या?
1: खौसा
0: क्या?
1: खौसा।
0: अच्छा
1: खौसा,
0: पूरी जिंदगी आप पारक बुला के घूमते थे।
1: एक्सक्यूज मी,
0: ठीक है,
1: पारक कौन बोलता है?
0: बोलते हैं, तनीषा बोलती थी पहले। पारक बोलती थी वो इंदौर में, नॉर्थ इंदौर में जब थी वहां।
1: फिल्म पारक, ये क्या हो रहा है?
0: फिल्म नहीं है, फिल्म। मैं तो भाई, मैं मल्लू एक्सेंट कहीं तो घुसाना पड़ेगा ना मुझे। लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई यू डोंट हैव मल्लू एक्सेंट, मैंने बोला किसने बोला, आप मुझे फिल्म बोलते हुए सुनो।
1: आपने कभी मुझे फिल्म बोलते हुए सुना है?
0: फिल्म
1: फिल्म
0: फिल्म
1: फिल्म
0: फिल्म
1: फिल्म।
0: ओ भाई फिल्म कहाँ से ठीक है?
1: एक मिनट, इनमें से कुछ भी ठीक नहीं यार, इट्स मूवीज। मूवीज बोलो ना यार आप लोग, ये क्या फिल्म फिल्म कर रहे हो?
0: क्या बोला आपने? मूवीज
1: मूवीज
0: हैं,
1: मूवीज।
0: अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे तनीषा मैडम आप?
2: फिल्म।
0: आपके फिल्म से तो बढ़िया है।
2: मैं तो फिल्म ही बोलती हूँ।
0: फिल्म क्या?
2: फिल्म
0: है,
2: फिल्म।
0: अच्छा अच्छा,
1: जो जो इंग्लिश में होती है वो फिल्म होती है।
0: अच्छा,
2: जो मलयालम में होती है
1: फिल्म होती है,
2: और हिंदी में फिल्म होती है।
0: फिल्म होती है, देखिए वो तो एक्सेंट तो हर जगह आ ही जाता है, कौन ये कर सकता है ना। और रिफत हुसैन का मैसेज आया है, वेरी नाइस प्रोग्राम, लव करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज देख के। जैसे ही तनीषा आई यहाँ पे, मतलब लव इमोजी आने लगे। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तनीषा आने के लिए। वैसे हमने एक सवाल पूछा था, सवाल जो है एक गाने के माध्यम से हमने पूछा था, तो पहले गाना जो है एक और बार हम लोगों को सुना देते हैं।
3: गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो।
0: अब देखो, गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, ये कौन से मूवी का गाना, हमने पूछा था। हमारे पास जो है भर भर के जवाब आए हैं, और जनता ने भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया है। अंसल भाई ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला हर दिल जो प्यार करेगा, गिरीश भाई ने बोला हर दिल जो प्यार करेगा, रजत भाई ने बोला हर दिल जो प्यार करेगा, सैद ज़ादा भाई ने बोला हर दिल जो प्यार करेगा, कार्तिक भाई ने बोला हर दिल जो प्यार करेगा, और
2: लोग बोल रहे तो सही होगा शायद।
0: बिल्कुल सही बोला है, तो तालियां बजेंगी और तालियों के साथ साथ हम बता दें आपको कि लकी विनर के पास मौका है जाने का सॉल्ट मैंगो ट्री में टी डे के दिन, और चाय और चर्चा करने का रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ।
4: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल, टी टॉक्स एंड मेमोरीज
5: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक टेस्ट, ग्रेट एम्बियंस एंड बजट फ्रेंडली। मतार कदीम, कॉल 5164800।
0: और यहाँ पे मुझे रिफत हुसैन ने एक और मैसेज भेजा है, उन्होंने बोला है डेडली ट्रायो करके, क्या बात है भाई, क्या बात है, तीनों लोग आ गए,
1: तीनों भाई
0: क्या बात। वो कभी कभी कशिश इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया भारी बातें कर देती है
1: कि मैं,
0: हाँ
1: क्या होते हैं
2: कभी कभी होता है पर
0: वो 2003
1: में कभी आते हो ना यार, आप रोज आया करो, रोज ऐसी बात करें।
0: चलो ठीक है, हो गया गाइस, तो हम गाना प्ले करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी और एंजॉय करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो Ooredoo ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo।
3: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है बताना चाहेंगे आपको, वो ये है कि हम जा रहे हैं चाचा बाबा कर रहे हैं,
1: कैसी बातें करने लगे,
0: गुड बाय कर रहे हैं, कोई बात नहीं अभी मुस्कान आ रही है यहाँ पे, तो मुस्कान को जगह देनी पड़ेगी अपने को
1: मुस्कान जो है बड़ी सी मुस्कान लेके एकदम तैयार खड़ी है
0: बिल्कुल पूरे फैलान के साथ।
1: जो है यहाँ से प्रस्थान कीजिए तो हमारा आगमन होगा, बस हम यहाँ से चलते हैं। अब कल आना है तो अब जाना तो पड़ेगा, बस जाते हैं। आज का मैच जो है वो देखने की तैयारी करते हैं, बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
0: 3 डब्बे टिश्यू निकाल के रखे मैंने, वैसे देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल यही बोलते हैं हम भी, जरा टाटा बाबाई करते हैं और यही आपसे जाते जाते दरख्वास्त करेंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में
1: याद रखना।
0: स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास, टाटा बाय बाय।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
3: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि न्यूज़ तो आपको हर जगह मिल जाती है लेकिन मूड रिपेयर करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं. तो आज हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी इंटेलिजेंट बातें और थोड़ा सा सेल्फ रियलिटी चेक करेंगे, सब करेंगे. पर पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि आज आपका मूड वेदर जैसा है या वाईफाई जैसा, मतलब स्टेबल है या कभी फुल सिग्नल या कभी नो सिग्नल. सो ऑनेस्टली मॉडर्न लाइफ का ना बिगेस्ट इशू यही है कि हम फिजिकली एक जगह होते हैं और मेंटली दूसरी जगह. ऑफिस का स्ट्रेस, घर का प्रेशर, नोटिफिकेशंस, फ्यूचर की टेंशन, एवरीथिंग इज हेयर. मतलब ब्रेन टैब्स की तरह ओपन रहता है और इसीलिए कभी कभी रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मिनट आप बस सुनते हो और थोड़ा रिलैक्स फील करते हो. ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहे हो, किचन में हो, जिम में हो, या फिर मतलब सिर्फ यू नो कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और यू आर लिसनिंग रेडियो. सो आज लाइफ को काफ़ी मस्त बनाने वाले हैं विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. बात करेंगे कतर में क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या है, कौन सी मूवीज़ हैं जो मैं अभी इस टाइम पे देखना चाहती हूँ या देख रही हूँ, कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ रही हूँ. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. सुंदर रही रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सो बेसिकली दोहा में जीसीसी गेम्स ऑफिशियली कतर के नाम होते जा रहे हैं। टीम कतर का परफॉर्मेंस अब सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, डोमिनेटिंग भी है। एथलेटिक्स, बॉलिंग, शूटिंग, स्नूकर सब मतलब चल रहा है, और टेबल टेनिस भी। हर साइड आपको मेडल्स मिल रहे हैं। और सबसे इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस में से एक अगर मैं बात करूँ, जो कि 400 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मिला है, और मतलब अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ो तो ऑब्स्टेकल ऑलरेडी रेडी रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कितने सारे मेडल्स जो हैं वो जीत लिए हैं। सो पहले गर्ल्स स्पोर्ट कॉन्वर्सेशन मोस्टली ना फुटबॉल सेंट्रिक होता था, लेकिन जब से मैं ये जीसीसी गेम्स के बारे में पढ़ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉलिंग, फेंसिंग, स्नूकर सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा है। और बॉलिंग टीम ने तो टॉप पोजिशन इन डोमिनेट कर लिया है, मतलब पहले पोडियम लिटरली कतर का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंडोर स्पोर्ट्स गल्फ में हो रहा है और सारी चीज़ें जो है वो कतर जीत रहा है। पर धीरे धीरे आई कैन सी कि एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस गेम, एंड आई रियली लाइक इट। मतलब जब जब मैं इसके अपडेट्स देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि कौन सा स्पोर्ट है जो आपको रेगुलर बेसिस पे यू नो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट प्ले करने जाना चाहिए? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: So, आज की जो किताब है ना लिटरली अनफॉरगेटेबल है. अगर आपने इसे पढ़ लिया तो कभी आप भूल नहीं सकते. जापानीज ऑथर मुराकामी की ये बुक वर्ल्ड वाइड कल्ट क्लासिक मानी जाती है. जैसे कि यू नो हम 90s की कुछ मूवीज को मानते हैं, ऐसे ही ये किताब है जिसका नाम है काफ्का ऑन द शोर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है.
1: Okay. Book in focus with Muskan.
0: So, आपको लगेगा ये नॉर्मल स्टोरी टेलिंग है, बट नहीं, इट फील्स लाइक ड्रीम. ऐसा लगता है कि पैरेलल रियलिटी चल रही है. लोनलीनेस है, डेस्टिनी है, मेमोरीज है. भाई लोनलीनेस से मुझे एक आज जो सलमान खान का ट्वीट भी याद आ गया, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सब कुछ मिक्स है इस किताब में और इंटरेस्टिंगली हर रीडर बुक को अलग तरह से इंटरप्रिटेट भी करता है. मतलब हर चीज़ को एक्चुअली, नॉट जस्ट बुक. किसी को इमोशनल हीलिंग लगती है, किसी को मिस्ट्री, किसी को मुराकामी की राइटिंग स्टाइल काफ़ी काम लगता है, किसी को लगता है कि यार लास्ट तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ खुद ही सोचना है. और आज की फास्ट वर्ल्ड में स्लो इमोशनल स्टोरी टेलिंग जो है वो काफ़ी रेयर हो गई है. ये बुक उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो ओवरथिंकर्स हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि मतलब कब क्या होने वाला है उन्हें पता ही होता है. मतलब वो सब कुछ इमेजिन करके रखते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि बुक ख़त्म होने के बाद भी ब्रेन उसके बारे में ही सोचता रहता है. सो इफ़ यू थिंक यार मतलब मुझे भी एक ऐसी किताब पढ़नी है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम तक सोच पाऊँ, सो देन यू कैन गो विद दिस मुराकामी बुक जिसका नाम है काफ्का ऑन द शोर. अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो आपको क्या लगता है, मतलब हाउ यू फील आफ्टर रीडिंग दिस बुक. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आते वक्त आपको मेट्रो स्टेशन में अगर फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाए तो कैसा रहेगा? वैसे आइडिया बहुत अच्छा है ये. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. कतर रेल और PHCC मिलके अल साद मेट्रो स्टेशन पर जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट काफी स्मार्ट है क्योंकि मेट्रो स्टेशन अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स नहीं है, कम्युनिटी स्पेसेस बन गए हैं. इवेंट्स में मैंने हमेशा देखा है फ्री मेडिकल चेकअप्स, कंसल्टेशन, अवेयरनेस एक्टिविटीज, गिफ्ट्स, मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन, सब कुछ है. मतलब सब कुछ. और ऑनेस्टली मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि फिजिकल हेल्थ की बात सब करते हैं पर मेंटल एग्जॉशन की बात बहुत कम होती है. और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे के अराउंड ये इनिशिएटिव हो रहा है और ग्लोबली हेल्थ केयर ग्रेजुअली हॉस्पिटल्स के बाहर मूव हो रहा है. पब्लिक स्पेसेस में अवेयरनेस इंक्रीज की जा रही है, ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन की बात की जा रही है और कतर पब्लिक वेलनेस इनिशिएटिव में काफ़ी एक्टिव हो रहा है. सो आई थॉट व्हाई नॉट, मतलब मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं क्यों नहीं बताऊँ आपको ये सब. सो अगर आप भी अल साद मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल करते हैं देन दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो. 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो

भाई बेंगलुरु मतलब आपकी फेवरेट, वन ऑफ योर फेवरेट टीम। मैं जब भी आपसे पूछती हूँ तो सबसे ज्यादा मैसेजेस जो आते हैं वो बैंगलोर के लिए आते हैं। सो 2026 के इस टूर्नामेंट में बैंगलोर जो है वो पंजाब को हरा कर प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। टीम ने 13 मैचेस में से 18 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप किया है और बैंगलोर अब लीग स्टेज में टॉप 2 से बाहर नहीं हो सकती, इसीलिए इसका क्वालिफायर 1 खेलना मतलब एकदम डिसाइड हो चुका है। दूसरी तरफ पंजाब को लगातार छठवीं बार हार तो मिली है जिससे टीम के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के चांसेस जो है वो काफी कम हो गए। दिल्ली ने राजस्थान को हराकर एक नंबर आगे छलांग लगाई और टीम जो है 12 पॉइंट के साथ 7th नंबर पर पहुंच गई है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है एंड इसी के साथ बेंगलुरु टॉप पर आ गई है और एवरीबॉडी इज सो हैप्पी क्योंकि सबको यही चाहिए था। अब बात और भी प्लेयर्स की करनी है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर सूर्यवंशी की। एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले जो इंडियन क्रिकेटर हैं वो यही हैं। राहुल का 8वां 500 प्लस स्कोर हो गया है और इस सीजन में यशस्वी के 4000 T20 रन पूरे हुए हैं। मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स बने हैं ना इस पूरे टूर्नामेंट में। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बाय द वे आपको क्या लगता है, बैंगलोर तो पहुंच गई है अपने फाइनल्स में और कौन सी टीम्स है जो फाइनल में जाने वाली है? 3311106 3 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट और यहाँ पर दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली ने अपने 62nd मैच में राजस्थान को 5 विकेट से हराया और कल का ये जो मैच था दिल्ली ने 19 ओवर 2 बॉल्स में 5 विकेट खोकर अपनी जीत जो थी वो सिक्योर कर ली। अब बात करते हैं भाई रिकॉर्ड्स की। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। मतलब राजस्थान के ओपनर जो है वैभव सूर्यवंशी, भाई इतनी कम उम्र है इनकी, अगर आप इनके स्कोर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कर क्या रहा है। 44 सिक्स लगाए हैं इन्होंने इस पूरे मैच में, किसी भी इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले इंडियन बैटर जो हैं वो बन गए हैं। उन्होंने हैदराबाद के अभिषेक शर्मा का जो रिकॉर्ड था 42 छक्के लगाने वाला वो भी तोड़ दिया है भाई। मतलब वैभव सूर्यवंशी इज ऑन नंबर 1। 2025 का रिकॉर्ड था श्रेयस अय्यर के पास, 2016 में विराट कोहली ने 38 छक्के लगाए थे एक साथ, और उसके अलावा अभी 44 के साथ वैभव सूर्यवंशी इज ऑन नंबर 1। इसी के साथ अगर मैं बात करूं राहुल की, तो उनका 8वां 500 प्लस रन वाला जो सीजन है वो कंप्लीट हुआ है ये, और ऐसे बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बने हैं एंड एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग ग्रेट। हो सकता है कि उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, हो सकता है कि उन्होंने इस सीजन में खुद को फाइनल में नहीं सिक्योर किया, बट रिकॉर्ड्स बहुत सारे बनाए हैं। बाय द वे, अब आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है फाइनल्स में? You are listening Radio Olive. मैं हूँ मुस्कान। 3311063 is my number. Stay tuned. Jio Binda.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। Cool Song.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

देखो भाई, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों सेम चीजें नहीं होती। सोशल मीडिया पर फैंस ना इतना कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं सिर्फ एक ट्वीट के बाद, विच इज सलमान खान ट्वीट, अब उसे एक्स बोलते हैं, आफ्टर इमोशनल पोस्ट अबाउट लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक्चुअली अकेला रहना और अकेला महसूस करना कितनी अलग बात है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग सराउंडेड होके भी बहुत अकेला फील करते हैं, है ना। इवन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉलिट्यूड मतलब पीसफुल अलोन टाइम, और लोनलीनेस का मतलब है इमोशनल डिस्कनेक्ट। हर कोई सलमान के कमेंट में पूछ रहा है कि भाई आप ठीक तो हो ना, मतलब आप अलोन हो सकते हो बट पीसफुल, यू नो, और क्राउडेड रूम में भी आप लोनली फील कर सकते हो, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। सो अगर आप लोनली फील कर रहे हो ना, तो आपको कुछ तो मतलब चेंज करने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया ने ये इशू और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। सो ऑनलाइन एवरीबॉडी लुक्स हैप्पी, सक्सेसफुल, सराउंडेड, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है यार। क्रिएटिव पीपल सोशली सॉलिट्यूड इंजॉय करते हैं, लेकिन इमोशनल आइसोलेशन डेंजरस हो सकता है, इसीलिए कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग दिखना और ओके होना दोनों सेम नहीं है, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि यार अगर आप अकेला फील कर रहे हो तो उसका क्या रीजन है। 3311106 इज माई नंबर, यू कैन एनी टाइम व्हाट्सएप मी अगर आपने भी ऐसा ही कुछ फील किया है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: वो तो आपको पता ही है कि कतर में जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उन पर ऑलरेडी ज्यादा टैक्स लगता है और कतर की गर्मी में नेचुरली हम सबको कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स याद आती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत शुगरी जो ड्रिंक्स होती हैं वो बॉडी को और ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करवा देती हैं। अब आपको लगेगा ये कैसे, रीजन बताती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। हाई शुगर ड्रिंक्स जो है वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इंक्रीज करती हैं जिससे इंटरनल हीट भी इफेक्ट हो सकती है, और चिल्ड ड्रिंक्स जो है वो टेम्परेरी आपको कूल फील करवा सकती हैं, कूलिंग दे सकती हैं, लेकिन हाइड्रेशन सॉल्व नहीं होता उससे। सो इसलिए गल्फ समर्स में डॉक्टर्स जो है वो आपको बताते हैं कि कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है हाइड्रेशन में और बॉडी को कूल रखना सिर्फ कोल्ड ब्रीज खाने जैसा नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर प्यास लग रही है और आपको लग रहा है कि कुछ ठंडा पी लिया जाए और वो ठंडा जो है वो बहुत ही शुगरी है या पैक्ड है, तो आपको फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि प्यास नहीं लग रही है तो वो ठीक है, मीनवाइल जो बॉडी है उसको ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होने फील होने लगता है, उसको लगता है कि यार कुछ मिल नहीं रहा है, तो अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो भाई पानी तो पीते रहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, ये गाना।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st May तक. Experience more with ओरिडू.
3: Big

देखो आज तो सिर्फ 18 तारीख है, लेकिन पैसे जो है वो महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाते हैं। यूजुअली ये सबकी प्रॉब्लम है। सैलरी आती भी है और पता भी नहीं चलता कि कहाँ गई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टली मॉडर्न स्पेंडिंग का बिगेस्ट इशू क्या है? सब्सक्रिप्शंस, फूड डिलीवरीज, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग और स्मॉल ट्रीट्स। बस ये करते करते आपके जो इनविजिबल एक्सपेंसेस होते हैं बढ़ते चले जाते हैं। और ये मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें मैंने पढ़ा कि सैलरीज जो है वो भाई महीने के आधे महीने के बाद ही खत्म होना शुरू हो जाती है और सब मिलके जो बजट है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो इमोशनल स्टेट में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। स्ट्रेस है तो शॉपिंग कर लिया, परेशान है तो कुछ अच्छा खाना ऑर्डर कर दिया, बोर हो रहे हैं तो ऑनलाइन कार्ट भर लिया। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक सिंपल सा रूल बोलते हैं कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। मतलब ऑपोजिट नहीं करना है, पहले खर्चा करना है बाद में सेविंग करना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सैलरी एक तारीख को आती है तो पहले सेविंग का अमाउंट जो है उसको फर्स्टली सिक्योर कर दीजिए, उसके बाद ही अपना जो खर्चा है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट में से कीजिए। इमरजेंसी फंड स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।

0: क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, यू शुड यू नो ऑलवेज थॉट अबाउट दैट. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिच पीपल हैं और फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं वो डिफरेंस क्या है उनकी इनकम का, ये बताती हूँ. मनी हैबिट्स का डिफरेंस होता है बेसिकली, इनकम का हैबिट नहीं होता. सो लोग जो है बजटिंग बहुत बोरिंग लगती है उनको, लेकिन वो करते हैं. और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो साइलेंट स्ट्रेस होता है, आप किसी के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पाते. सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले सेव करना है, बाद में खर्चा करना है, उल्टा नहीं करना है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. नंबर है 3311063. आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की होगी. बताओ मुझे व्हाट्सएप पे. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

सो बॉलीवुड जो है वो ऑफिशियली कॉमेडी मोड में वापस आ रहा है. मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म्स आ रही हैं इस साल, विच इज धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल. दोनों का ऑलमोस्ट डेट जो था वो सेम था और अब रिलीज डेट शफल कर रहे हैं ताकि बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड कर सके. और ये स्मार्ट मूव भी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों फिल्म नॉस्टैल्जिया हैवी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो हैं. ऑडियंस ऑलरेडी इमोशनली कनेक्टेड होगी जॉनी लीवर जैसे अच्छे कलाकार वापस आ रहे हैं. सो कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही डिफरेंट जोन में आपको लेके चला जाता है. एक्शन और VFX से ज्यादा डिफिकल्ट टाइमिंग होती है इनकी, सब कुछ खुद से करना पड़ता है. और आज के स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में लोग लाइट हार्टेड सिनेमा फिर से डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए हेरा फेरी, वेलकम और धमाल जैसी मूवी हमें बहुत कुछ याद दिलाती है. और अभी भी ये काम करता है क्योंकि लाफ्टर टाइमलेस होता है. एंड आई विल से कि धमाल और वेलकम टू द जंगल जो है वो जून और जुलाई में रिलीज होने वाली है. इनकी डेट्स को अब थोड़ा सा शफल कर दिया गया है. दोनों वैसे जून में रिलीज हो रही थी, बट नाउ वन इन जून वन इन जुलाई, सो दैट आपके भी वीकेंड्स मस्त प्लान हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको बॉलीवुड का पुराना एरा जो है वो भी देखने को मिल जाएगा. मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पसंद है ऐसी मूवीज. बाय द वे, व्हाट अबाउट यू, बताओ मुझे 3311106 पर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हर दिन मैं आपसे कहती हूँ कि आज का लास्ट थॉट ये है. सो आज भी ऐसी एक लास्ट थॉट लेकर आई हूँ. वैसे बातें करते करते कब जाने का टाइम हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. आपने कभी नोटिस किया है कि आपके दिन का बेस्ट मोमेंट कौन सा होता है, कौन सा टाइम है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है? बाय द वे, मुझे अच्छा लगता है जब मैं शांति से थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालती हूँ. लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है लेकिन हैप्पीनेस जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती है. और थोड़ा पानी ज़्यादा पीना, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है. मुझे लगता है कि मैंने खुद का ख्याल रखा. हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं होता लेकिन हर दिन वैल्यूएबल ज़रूर होता है. सो आई ट्राई कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूँ, चाहे वो किसी किताब से हो या ऑफकोर्स सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा हो गया है. सो चाहे वो व्हाट्सएप से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो किसी आसपास के कॉलीग से हो या फिर यू नो कहीं भी किसी भी से हो सकता है. सो कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत जरूर डालिए और हमेशा यू नो काइंड रहने की कोशिश कीजिए लाइफ में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एफ. नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. कल मिलेंगे सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.
1: रेडियो ऑल एफ पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम ड्रीम बिगर

दिलजीत दोसांझ की आवाज में यू एंड मी और अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार और एल्बम से ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम. थैंक यू शागिर जी आपके साथ ऑल रिचार्ज लेकर. वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. मंडे मे 18th कैसा जा रहा है आपका दिन आज का बताएं मुझे 3311063 पर मैसेज करके. जी धुरंधर से आ रही है गाना.

अरिजीत सिंह जिस तरह से गाने गाते हैं ना, ऐसा लगता है कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहा है बंदा. This beautiful track is also on the way. और एक brand new track आपके लिए. और इस गाने के पीछे एक बहुत कमाल स्टोरी है, वो भी बताऊंगी मैं. लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल. तो आइए मैसेज कीजिए 3311063 पर और बताएं कैसे हैं आप. How has the day been so far? How's the Monday treating you? या फिर कॉल कर दो बाय द वे 4444106 पर. Stay tuned on Jio Bindaas.

0: Sahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: So I'm Chakrabarti ki awaaz mein Life in a Metro se in din only on Radio Olive 106.3 FM Tanisha ke saath aap Olive Retard chal rahe hain yahan par aur in dinon to bhai hamari Qatar ki jo teamein hain wo kamaal macha rahi hain GCC games mein. So far 109 medals humne pa liye hain 4th Gulf Games Doha 2026 mein, and that is such an amazing thing, yaar. 39 gold, 38 silver, 32 bronze. Yes, ye hamara 109 ka pura total ho chuka hai abhi tak, and the games will conclude on 22nd of May. To abhi to aur bhi din baaki hai, bahut sare aur bhi medals hamare paas aane wale hain, and I am feeling so happy about it ki itna amazing kar rahe. Qatar ne apna ek spot already bana liya hai, jis tarah se wo sports events ऑर्गेनाइज करते हैं वो कोई और कंट्री मैच नहीं कर सकती. सेम वे यहाँ भी कमाल कर दिया है, मजा ही आ गया है. ऑन दैट नोट सेंडिंग अमेजिंग ट्रैक्स ऑफ कदमानत अली साहब की आवाज में तू ही मेरा. ये हमारे जितने भी एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है गल्फ गेम्स में वो कह रहे हैं सारे मेडल्स को तू ही है मेरा. स्टे ट्यून्ड एंड्रियो बिंदास.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Rup Kumar Rathore sahab ki awaaz mein Anwar movie se Maula Mere Maula beautiful track only on Radio Olive 106.3 FM Tanisha aap ke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par aur aane wala gana
1: Oh bulya ve tu chal aaya
0: Absolutely amazing track और एक खास बात एक खास story है इस गाने के पीछे So ये गाना गाया है मधुर शर्मा ने और साथ में है अशोक मस्कीन जी So अशोक जी की जो story है काफ़ी कमाल है He belongs to Jalandhar, India और वो एक factory में job करते थे और music has always been a passion for him, you know वो factory में काम करते करते भी जो अपना music था उन्होंने नहीं छोड़ा वो बनाते रहते थे गाते रहते थे उन्हें इतना ज़्यादा पसंद है music कि he used to travel on foot या फिर साइकिल पे जस्ट टू ट्रेन विद लेजेंडरी पंजाबी सिंगर्स एंड यूनिवर्स ने उनका डेडिकेशन देखा फाइनली ही केम ऑन दिस ट्रैक और जब से ये गाना वायरल हुआ है कॉन्स्टेंटली उनका फ़ोन बजता ही जा रहा है एंड यू नो ही इज़ गेटिंग ऑल द अप्रिसिएशन ही डिजर्व्स एंड ही इज़ गेटिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ ही डिजर्व्स येस फाइनली उन्होंने अपनी फैक्ट्री की जो जॉब है वो छोड़ दी है क्योंकि उन्हें बॉलीवुड से भी सिंगिंग का ऑफर मिल चुका है एंड दैट इज़ सच अ डिलाइटफुल थिंग टू नो कि यू नो एक चीज के पीछे जब आप पड़ जाते हो मे बी थोड़ा देर से मिलता है आपको उसका वर्थ आपको उसका फ्रूट जरूर मिलेगा अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं तो सो हार कभी नहीं माननी मेरी जान जस्ट लाइक अशोक मस्कीन जी आइए एंजॉय करते हैं गाना साथ में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: अनु मलिक नेहा कक्कर की आवाज में जुड़वा। टू से ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंदे कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ। ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और ये गाना इतने सही टाइम पर आया बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग विच टेल्स अस कि जिसने करना होता है ना वो कर जाता है। जी हाँ, सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी। आई केम अक्रॉस अ मैन हु लिव्स इन इंडिया एंड हिज वाइफ लिव्स इन स्वीडन for some reason, you know, after some time she had to go back to Sweden and she lives there. Now the man could not afford the flight tickets to go to Sweden apni wife se milne ke liye, to wo India se bicycle pe travel kiye aur Sweden pahunche. 3 months lage unhe pahunchne mein, but he finally reached there to meet his wife. हाउ मतलब ऑब्वियसली इट साउंड्स वेरी फिल्मी, हमने मूवीज में देखी है ये चीज़ें और जब हम रैशनली सोचें तो इट डजेंट साउंड वेरी प्रैक्टिकल, बट ही डिड दैट एंड दैट सेज कि जिसे करना होता है ना, जिसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, आप प्रायोरिटी हो, वो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। बट लव इज सच अ ब्यूटिफुल इमोशन, इट मेक्स यू डू थिंग्स विच वी फील आर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एंड आई थिंक हम सब ने ये कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा फॉर सम ऑफ द अदर पर्सन, है ना। Yes, I know. That smile on your face says it all, meri jaan. Stay tuned and Jio Bindas.
1: Ab suniye, Olive ka zabardast hit. Zabardast hit.

0: तनिषा
1: एक चालीस की लास्ट लोकल से लारी छूटी होनी ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड लेट्स टॉक अबाउट द इमोशन वी ऑल हैव फेल्ट बट डिड नॉट नो कि इसके लिए भी एक वर्ड एग्जिस्ट करता है
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: एंड द वर्ड टुडे इज एक्सुलेंसेस EXULANSIS exulances. It basically means कि एक person है जिसे आप एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी feelings express कर रहे हैं and that person is not able to grasp it. वो समझ ही नहीं पा रहे हैं and not just once, not twice, काफी बार आपने समझाने की कोशिश करी है पर वो इंसान नहीं समझ पा रहे हैं and now you're feeling कि disappointed कि यार अब give up ही कर दो अब नहीं हो पाएगा अब इससे ज़्यादा तो मैं और explain नहीं कर सकती हूँ that feeling of give up and not able to express yourself clearly to a person is called exulances and I know हम सब के साथ कई बार ये हुआ है most of the time इसलिए होता है कि हम proper words नहीं ढूंढ पा रहे होते अपनी feelings को express करने के लिए और या फिर ये हो जाता है कि सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा intellectual है नहीं कि वो हमारी बात को समझ पाए है ना या वेल ऑन दैट नोट सेंडिंग मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में प्लेयर्स मूवी से एक कमाल का गाना स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ की आवाज में मोरनी बन के ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है जी लेम जैम्स का वक्त हो गया है और जो मैं सवाल पूछूंगी उसका अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके पास मौका है 21 मई को जो कि इंटरनेशनल टी डे है उस दिन रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ चाय और स्नैक्स पर जाने का एट सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट यस
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
0: जी, so सवाल आज का ये है कि समोसे का दिल क्यों नहीं दुखाना चाहिए? Why you should not hurt a samosa? बाकी समोसे का नाम लेते ही ऐसे मन करेगा खाने का, है ना? और ये तो टाइम है यार, टी टाइम स्नैक होता है वो, right? So पहले आप मुझे जवाब दो, उसके बाद बढ़िया सा एक समोसा खा लेना. समोसे का दिल क्यों नहीं दुखाना चाहिए? 3311-1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर और सही जवाब देंगे तो मौका मिलेगा रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ टी एंड स्नैक्स पे जाने का.
3: Oh,

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
2: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Offer valid hai 31st May tak. Experience more with Ooredoo.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Alicia.
1: Bad news se karnaj lagi vaz mein toba to bol on radio 106.3 FM the DJ aapke saath aur recharge chal rahe hain yahan par
2: lame jams
1: ka aaj ka mera sawal ye hai ki samosa ko hurt kyun nahi karna chahiye. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की है पर नहीं हो पा रहा है. कह रहे हैं खाने में मजा आता है इसलिए हर्ट नहीं करना चाहिए. अरे नहीं यार, मजा तो आता है, आई अग्री विद दैट, पर एक ऐसे लेम रीजन भी है उसके पीछे. जरा उसके बारे में सोचिए कि एक समोसे को हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ऐसा क्या है कि उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, बताएं मुझे 3311 1063 पर. और इसका सही जवाब देंगे तो आपके पास मौका है 21st मई इंटरनेशनल टी डे पर रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ चाय पर जाने का.
3: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
4: ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
1: हाँ जी, तो फटाफट से जवाब दीजिए कि एक समोसे को हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए. 3311 1063 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर. फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास.
5: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
6: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
5: कूल सॉन्ग.

0: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੂਵੀ ਸੇ ਲਗਨ ਲਗੀ ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਐਫ 106.3 ਐਫ ਐਮ ਤਨੀਸ਼ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਲ ਐਵਰੀ ਚਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ सलीम जेम्स का आज का मेरा सवाल था कि समोसे को हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे तरह तरह के जवाब आए, सही जवाब भी आए हैं पर वो बहुत कम आए हैं। लेकिन आप ये सुनिए, इरफान जी का कहना है समोसे को हर्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्टलेस हैं। ओके, आदिल जी का कहना है कि समोसा ठंडा हो जाएगा अगर उसको हर्ट कर दिया तो। एंड शहजाद जी कहते हैं समोसे को कभी हर्ट नहीं करना ना कह के, एंड इस बात से तो मैं बहुत जोर से अग्री करती हूँ। आप समोसे को कैसे मना कर सकते हो यार, दिस इज नॉट अलाउड, नो नो। बट ये सब गलत जवाब है। सही जवाब मुझे दिए हैं सिर्फ तीन लोगों ने, दैट इज सना, योगिनी और एक और बहुत मजेदार जवाब है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। और साथ में मुझे कॉल आया था डॉक्टर अबू बकर का, वो सुनते हैं जरा कि मेरी क्या बात हुई उनसे। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम डॉक्टर अबू बकर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका एक सवाल है ना रेडियो पे कि समोसे को क्यों नहीं हर्ट करना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: तो मेरे ख्याल में तो इसका अच्छा जवाब ये बनता है कि समोसे को इसलिए हर्ट नहीं करना चाहिए कि उसके उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है।
0: ओहो, करेक्ट बात बोल दी एकदम आपने। सो डॉक्टर साहब, आपको समोसे खाना पसंद है?
1: समोसे भी पसंद है, पकौड़े भी पसंद है और चाय भी पसंद है।
0: अरे परफेक्ट हो गया फिर तो। इशारा तो मैं बिल्कुल समझ गई हूँ डॉक्टर साहब का। बट जिन्हें भी मौका मिलेगा रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ इंटरनेशनल टी डे पर चाय और स्नैक्स के लिए जाने का, उन्हें पता चल जाएगा जल्दी। थोड़ा इंतजार करो मेरी जान, इतनी जल्दी क्या है यार। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: on a race like me. Danisha.
1: Danisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath. Olive Recharge chal raha hai yahan par. Aur waqt ho gaya hai mere jaane ka. Meri jaan milte hain kal dopahar 2 baje. ट्यूसडे को. लेकिन तब तक आपने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल. और एक काम जरूर करना है जो अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है यार. फटाफट से जाइए इंस्टाग्राम पे जहाँ बैठ के आप डूम स्क्रॉल करते रहते हैं. अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है रेडियो ऑलिव के पेज को तो जल्दी से कर लो. और कर रखा है तो कोई नहीं, जाके पोस्ट वगैरह चेक करो, वहाँ पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, इंटरेक्ट करो. हमें पता चलना चाहिए कि चीज़ें आप तक पहुँच रही है यार. एंड नॉट जस्ट इंस्टा, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी. वी हैव बीन पोस्टिंग ऑल दीज अमेजिंग इंटरव्यूज ओवर देयर. वो भी जाके चेकआउट करो. बहुत सारी कमाल कमाल की चीज़ें पता चलेंगी आपको, आई एम टेलिंग यू. यस. और कोई भी बात जहन में हो, शेयर करना चाहते हैं, बिंदास आ जाइए 3311 1063 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

राब्ता से आप ये गाना सुन रहे हैं, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़ की आवाज, और ये जो आवाज सुन रहे हैं

आपका ध्यान जिधर भी है, आपकी हीरोइन इधर है, चार घंटे अपने जब होने वाले हैं तो पूरा अटेंशन मुझे चाहिए और कहीं पे आपका अटेंशन नहीं होना चाहिए। क्या पूरे दिन में आपको अटेंशन मिला? आपका दिन कैसा रहा? 3311106 पर मुझे बताइए। एंड कुछ स्पेशल शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूरे दिन में कुछ खास हुआ हुआ आपके साथ, चाहे भसड़ मची हो वो भी शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वेंट आउट सेशन भी चल सकता है पूरे चार घंटे, आई डोंट माइंड। जब अच्छा लगता है जब कोई शेयर करता है, जरूरी नहीं कि आप अपनी खुशी शेयर करो, आप अपना दुख भी शेयर कर सकते हो। मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ यार। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 पर खुश रहो, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो।

होए होए, व्हाट अ ट्रैक यार। देखो यार, मजा इसी में है कि ना इनकार करो ना इकरार करो। इकरार कर दिया तो इंतजार खत्म हो जाएगा, इकरार कर दिया तो फिर मजा खत्म हो जाएगा यार। वाह, मैंने क्या बात बोल दी, सही बोली वो नहीं मुझे पता। 5:19 बजे 42 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पहुंच गई।

0: और मैंने आपके दिन के बारे में पूछा था कि कैसा रहा आपका आज का दिन.
1: गुड इवनिंग सिमरन कौर, माय नेम इज एमल एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम फुरुसिया स्ट्रीट.
0: जी,
1: अभी आपने बात की कि दिन कैसा गुजरा. दिन बहुत अच्छा गुजरा.
0: वाओ.
1: आई एम वर्किंग एज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर.
0: ओके.
1: और राज वर्कर के साथ बहुत अच्छा दिन गुजरा. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया.
0: वाओ.
1: और फिर दोस्त ने लंच पे बुलाया जिसमें उसने पिलाई हमें लस्सी.
0: ओहो.
1: वो भी फुल ठंडी चिल्ड.
0: Okay.
1: तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरा. आप सुनाए आपका दिन कैसा गुजरा.
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इतने प्यार से अपने दिन के बारे में बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड लस्सी पीने के बाद आई एम श्योर आपको नींद भी आई होगी. मेरा दिन भी आज का बड़ा अच्छा निकला. मतलब थोड़ा सा स्लो था क्योंकि वो आजकल वो कोल्ड वगैरह चल रहा है ना, तो खांसी थी. बट ऑलमोस्ट ऑफिस में हम फनी करते रहते हैं तो मेरा ऑलमोस्ट दिन जो था वो काफी ज्यादा अच्छा निकला. लेकिन ये जो 4 घंटे निकलते हैं ना वो तो भाई एकदम मेरे फेवरेट है यार. और कभी कभी कुछ, आपने बड़े प्यार से मुझे सिमरन कौर बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा. कभी कभी कुछ लोग मेरा नाम गलत लिख देते हैं, जैसे कि इब्राहिम जी ने नाम लिखा है जो रियाद से हमें रियाद रहे हैं 18 साल, और नहीं दोहा में रहे हैं 2007 से लेकर 2025 में, और उसके बाद अब रियाद में है. वो उन्होंने मेरा नाम की स्पेलिंग लिखे SIMRUN. भाई रन नहीं है, सिमरन नहीं है, सिमरन है RAN. ओके, सो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि नाम बहुत जरूरी है दोस्त. मौसम आपके, सुनो मौसम आपके, सुनो. कल मैं कटारा गई अपने दोस्तों के साथ. भाई साहब इतना ठंडा वेदर, इतना ठंडा वेदर, इतनी ठंडी लग रही थी. 26 के करीब जो था वो वेदर था, एंड लेकिन 26 नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा जो था वो ठंडी लग रही थी. और हम ऐसा सोच रहे थे कि यार मतलब अभी मई ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गया, लेकिन फिर भी इतना अच्छा वेदर है. सो बड़ा मज़ा आया. सो जितना भी वेदर है अभी शाम का, निकल सकते हो निकलो फिर, क्योंकि निकलने के लिए तो निकलने वाले निकल ही लेते हैं, बट फिर भी सोचना पड़ता है थोड़ा. अभी के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस. आज का मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होने वाला है. विंड जो है 19 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चल रही है. ह्यूमिडिटी जो है वो 14% है. सो कुल मिला के वेदर तो आज भी अच्छा है दोस्त.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

Oh, so much love. सोनियो की तदगी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ थोड़ा प्यार और चाहिए, थोड़ा प्यार लव और चाहिए।

0: नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं, लेकिन एक नंबर मैच भी चल रहा है, उसके बारे में कैसे भूल सकते हैं दोस्त। सो मैच चल रहा है चेन्नई और हैदराबाद के बीच में। चेन्नई अभी खेल रही है 5.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद, स्कोर हो गया है 54 और दो विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। सो कौन कौन चेन्नई से है, कौन कौन है हैदराबाद से, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है दोस्त बताओ, तभी मजा आता है अपडेट बताने का, स्कोर बताने का। सिमरन कौर है आपके साथ, मैं गया जी टी विनर्स
1: स्कोर अपडेट presented by Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K site Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 Mei tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: अभी पूछे ना कि सिमरन क्या मतलब कुछ खाने का कुछ पीने का मन कर रहा है, देखो मेरा इस टाइम में ना इतनी कड़क चाय पीने का मन हो रहा है, सब वड्डा सारा कप भर के मेनू स्टूडियो में रख दो, मजा आ जाए। कभी आपने स्टील के ग्लास में चाय पी है? मैंने स्टील के ग्लास में चाय पी है भाई, बहुत मजा आता है। कांच वाले कप में तो आती आती है, जो नॉर्मल फैंसी कप्स है वो भी उसमें भी मजा आता है, लेकिन जो कांच वाले कप में और दूसरा कांच वाले ग्लास में और स्टील के ग्लास में अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया, स्टील के ग्लास में सिर्फ लस्सी नहीं चाय भी बहुत स्वाद लगती है। सो चाय की बात मैं अचानक से क्यों कर रही, क्योंकि इंटरनेशनल टी डे आने वाला है और ये टी डे हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की जो है प्लानिंग कर रहे हैं। और ये टी डे हम कहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं? सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में। अब वहाँ पर जाएंगे, खाली खाली चाय थोड़ी होती है, अब आप लोग मेहमान हो तो आपको साथ में स्नैक्स वगैरह भी खिलाने पड़ेंगे ना, बट उसके लिए हमको पहले चूज़ करने पड़ेंगे हमारे लिसनर्स की, कुछ सबको नहीं लेके जा सकते है ना, आपको पता ही है। सो कुछ हमारे लकी लिसनर्स हमारे साथ इस इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो आज चाहिए चाय के बारे में बात कर रहे हैं, चाय के खाने के बारे में बात कर रहे हैं, चाय के साथ जो है वो आपको फेवरेट कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी लगती है? मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हम सबको पसंद है चाय के साथ, लेकिन मेरे को लगता है कि डिपेंड करता है मेरे मूड पे। मुझे चाय मस्का जो है वो चाय के साथ मस्का बन जो है ना वो बड़ा सही लगता है यार, डुबो डुबो के खाने में है ना। और कभी कभी छोटे छोटे वाले समोसे रहते हैं वो भी खाने का मजा आता है, पकौड़े खाने का भी मजा आता है। अभी शाम के टाइम भी आपको भूख भी लग रही होगी, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, बट आपको खुद को रजिस्टर करवाना है ठीक है। चाय के साथ आपका बेस्ट कॉम्बो क्या है भेज दीजिए 3311063 पर। हमारे जो कुछ लकी लिसनर्स रहेंगे वो जाएंगे हमारे साथ इस इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने के लिए।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक टेस्ट, ग्रेट एम्बियंस एंड बजट फ्रेंडली। मतार कदीम, कॉल 5164

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

अब तो मेरा मन भी करने लग गया भागने का, वर्कआउट करने का, पर मैं क्या करूं, शो से नहीं भाग सकती ना। बात इटली की एक 87 इयर्स की ग्रैंड माँ है ना, वो पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि उसकी जो केयरटेकर है वो नहीं है यहाँ पे, लड़का उनका दूर रहता है और केयरटेकर चली जा चुकी है और उसको भूख लग रही है। तो फिर वहाँ से जो 2 इटालियन पुलिस हैं वो घर पे आते हैं और दादी अम्मा के लिए रेवियोली और टमेटो सॉस के साथ बनाते हैं और उनको ऐसा बिल्कुल शेफ बन के खिलाते हैं। हाउ स्वीट यार, मतलब वो पुलिस में ही कॉल कर देती है कि भाई मैं 87 इयर्स ओल्ड हूँ, मेरे से कुक नहीं, मैं कुक नहीं कर पाती एंड आई एम हंग्री एंड जो मेरी केयर टेकर है वो वापस ही नहीं आई है जाके और मेरा बेटा भी यहाँ पर नहीं है। बट यार कितनी क्यूट बात है यार, है ना, जो है ना, मतलब इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोग जो है ना वो इंस्पायर भी होते हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी के लिए कुछ करने के लिए ना आपका उनसे उनका रिश्ता होना बहुत जरूरी है, आप ऐसे भी किसी को खुश कर सकते हो यार। स्वीट हाँ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete your

0: RCB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
5: Hey, this is Ileana De Cruz.
6: This is me, Ritik Roshan.
7: Hi, I'm Alia Bhatt.
8: Hi, main hu Vivek Anand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
10: सिमरन के साथ.
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: कभी खुशी कभी गम ये भी नहीं आदमी से निकलेगा। क्यों जैसे मैंने मैं सुर लगाया मेरी खांसी निकल जानी है। 6:29 32 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है और ज्यादातर लोग जो है खांस रहे हैं उनको कोल्ड हो रखा है। ये वेदर का थोड़ा सा सीन जो है वो हो रखा है। प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑलिव रिवाइंड में आज कौन सा पुराना गाना आपके लिए होगा? आए मुझे याद है यार, ये मेरी मम्मा सुना करती थी। और जो हमारे घर पे रेडियो होता था उस पे भी ये गाना बजता होता था। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। और मैच भी चल रहा है, चेन्नई और हैदराबाद का मैच जो है चेन्नई में चल रहा है। 63rd मैच है आज और चेन्नई अभी खेल रही है 16 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 144 और 4 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं।
1: या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो।
0: सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर कहते रहिए जी ओबिंदास।
2: T20 स्कोर अपडेट presented by
3: Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K side Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
4: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio
1: Olive, I'm a number one. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
0: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: 6:48 ऑलमोस्ट स्टूडियो की घड़ी पहुंच चुके हैं आपके साथ। जैसे कि मैं पिछले घंटे आपको बता रही थी, इंटरनेशनल टी डे आने वाला है और चाय से हर जो जितने भी कतर में रहने वाले लोग हैं उनका अलग नाता है भाई। जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, जो मर्जी मौसम हो जाए, चाय तो जो है वो पीनी ही पीनी है। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम कुछ हमारे लकी लिसनर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे साथ इस इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं हम चाय के साथ। चाय के साथ स्नैक्स भी तो होने चाहिए ना। और ये सब कुछ होने वाला है सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में। बट जो हमारे लकी लिसनर हैं हमारे साथ कैसे जाने वाले, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है। बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट घंटे में बोला था कि चाय के साथ आपका फेवरेट वाला कॉम्बो जो है वो क्या है, है ना। मेरे तो मूड पे डिपेंड करता है, मेरे को चाय मस्का बन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। बट आप मुझे बताइए, कुछ लोग आप अपना चॉइस तो बता रहे हो लेकिन नाम नहीं लिख रहे हो। दोस्त, नाम इसलिए लिखना है ताकि आपका नाम हम ऐड कर सके और जब हम शफल करें और हमारे लकी लिसनर का नाम आए तो आपका नाम भी होना चाहिए। अगर आप नाम ही नहीं लिखेंगे, चाय में जज्बाती होगे, सिर्फ चाय के कॉम्बो के बारे में नहीं लिखना, नाम भी लिखना। सो बताइए आपका फेवरेट चाय का कॉम्बो क्या है, अपने नाम के साथ भेज दीजिए 3311063 पर। लकी रहे तो आप हमारे साथ सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में इस इंटरनेशनल टी डे पर करने वाले हैं फन। चाय भी पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे और क्या।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164.

0: Pragma's Wholesale Market at Salwaru. Ample parking, convenient location.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.4 FM.

0: ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਗੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7:25 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਰ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲੀਏ क्या क्यूट गाना है यार उसके साथ साथ
1: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं
0: यार इस गाने में भी कितना बढ़िया डांस होता है लेकिन मेरे तो ड्रीम्स में ही डांस होता है मैं तो ख्यालों में डांस होता है वैसे तो नहीं कर पाती हूँ अभी फिलहाल मैच कहां पे किसको क्या नचा रहा है मैं बता देती हूँ आपको चेन्नई और हैदराबाद का मैच चल रहा है चेन्नई ने अपने 20 ओवर कंप्लीट कर लिए हैं और हैदराबाद के लिए अब टारगेट मिला है 181 रन्स का सो या अभी के लिए मैच के हैं ये हाल अगर आप अपने हाल बताना चाहें तो मुझे ऑलवेज व्हाट्सएप कर सकते हैं 3311063 नहीं तो स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए
2: 4441063 Presented by
3: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadeem, Bakra, VFS Global ke site, Oak Banafi, Metro Kick, just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
4: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3, get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3, get 1 free offer on all products 15 Mehr tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: ओके लेट मी ट्राई. ओ माय गॉड, बिल्कुल भी नहीं हंसा जाता यार. हम ना गाने में सुरीले ना हंसने में सुरीले. 7:20 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है. सिमरन कौर आपके साथ है. एक चीज मैं आपको बताऊंगी, मतलब अमेजिंग यार.
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: हमने ये बात शुरू से सुनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है. लेकिन हर बार ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं. लोगों को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि लाइक टू शो हु दे आर.

0: की फर्स्ट जो इम्प्रेशन होते हैं ना वो प्रेजेंटेशन होती है, एंड टाइम जो है ना वो रियल इंटरव्यू होती है आप लोगों के लिए. सो मेक श्योर कि ये जो चीज़ आप बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन, नो ब्रो ऐसा नहीं होता है. वो तो सब कुछ ऐसा ऊपर ऊपर का दिखाया जाता है ना, एकदम टीजर होता है बंदे का, प्रेजेंटेशन होती है, वो होता है. तो आपको अगर किसी इंसान के साथ लाइफ में लंबा रिश्ता चलाना है तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए. टाइम जो है वो सब कुछ दिखा देता है, ठीक है. सो इतनी जल्दी इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है. दो लुक हु इज टॉकिंग सिमरन कौर, बट या मैं आपको भी बोल रही हूँ.
1: जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा.
0: और माही कहना
1: तानू है माही कहना मेरे इश्क के दी कोई हद ना.
0: इश्क दी हद किथे हुंदी है यार. सिमरन कौर है तुहाडे नाल, जी गोविंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

खाने की एनर्जी ऐसी है कि मेरे को अपने आप हैप्पी फील होने लग जाता है ना। और बताओ, हैप्पी हो, खुश हो? अरे यार, खुश रहना चाहिए, आपकी हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी को सुन रहे हो दोस्त। जेन जी डेटिंग टर्म में आज का वर्ड है टॉकिंग स्टेज। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जब बात करते हैं किसी रिलेशनशिप के बारे में, अभी तो टॉकिंग स्टेज चल रही है। टॉकिंग स्टेज ये होती है कि एक प्री कमिटमेंट फेज होता है डेटिंग का, जहां पर आप एक्सक्लूसिवली उसके साथ टेक्स्ट करते हो, फ्लर्ट करते हो, पर अभी अपने रिलेशनशिप को कोई लेवल आपने नहीं दिया होता है। मतलब सिर्फ अभी टॉकिंग स्टेज, बात ही चल रही है मैसेजेस पे, थोड़ा हल्का फुल्का फ्लर्ट चल रहा है, क्या ही चल रहा है यार। यस।

0: एक बहुत हैवी वर्ड बोलने वाली हूँ,
1: रुक जाओ।
0: ट्राई कि वो वर्ड मैं एक ही बार में सही बोल दूं, नहीं तो दूसरी बार में ट्राई करेंगे, तीसरी बार में ट्राई करेंगे। इस वर्ड को बोलते हैं कोशिशाबिशी, कोशिशाबिशी। ओ माय गॉड, मेरे से बोला गया कोशिशाबिशी। आई होप मैं इसको बिल्कुल सही जो है वो प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो एक जापानीज वर्ड है जो कि उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। इट्स यूज फॉर लाइक लोनली माउथ। अब आप इस तरह से नहीं समझेंगे, क्या होता है ना कि कभी कभी हमको भूख नहीं होती है लेकिन हमको बोर हो रहा होता है, हम फिर भी खा रहे होते हैं। तो इस टर्म को, इस जापानीज वर्ड को बोलते हैं कोशिशाबिशी। कोशिशाबिशी ये मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, जब मेरे को ऐसा थोड़ा सा कभी कभी मैं सोच कुछ और रही होती, कर कुछ और रही होती, टाइम जब है किल नहीं हो रहा होता तो आप बिना मतलब के जो है वो खाने लग जाते हो लेकिन आपको भूख नहीं होती है। तो आज मैंने ये नया वर्ड जो है वो सीखा, मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ। मैं कह रही सुनियो कि दादी की हाल चाल।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: ये गाना इतना प्यारा है. इस गाने में एक स्टोरी चल रही है. एक वाइफ जो है वो मायके जाने की बात कर रही है, लेकिन उसका हस्बैंड चाहता है कि वो मायके ना जाए. तो वो अलग अलग बातें जो है वो इस गाने में कर रहे हैं. इतना क्यूट गाना है, लव शव्ते चिकन खुराना. अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा ना भाई साहब, क्यों नहीं देखा है? पहले तो ये गाना सुन लीजिए. 2-1 एंड गो.

जी हर्षदीप कौर एंड शायद माल्या की आवाज। सुनियो कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल। और ये टाइम ऐसा है कि अगर आपको किसी की याद आ

0: याद जब बहुत सारी आती है तो बहुत सारा प्यार भी होता है ना।
1: इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव
0: दोनों में से एक टीम को दर्द होने वाला है। आज चेन्नई और हैदराबाद का मैच चल रहा है। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 181 रन्स का टारगेट दिया एंड हैदराबाद जो है वो अभी खेल रही है। 13 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 114, दो विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। 42 बॉल्स पे 67 रन्स जो है वो जीतने के लिए चाहिए। सो ये है मैच का हाल। वापस लौट के अरे यार आप लोगों का हाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीके से पूछेंगे, आप लोगों का नाम पूछेंगे और खेलूंगी नेम गेम, तैयार हो जाइए।
2: आपने सही सुना, अहमद अल मगरिबी पर चल रहा है बाय थ्री गेट वन फ्री ऑफर ऑन ऑल प्रोडक्ट्स 15 मई तक। दिस ऑफर इज अवेलेबल ऑन ऑल 19 ब्रांचेस।
3: ब्रॉट टू यू बाय Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
4: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
5: Awesome.
6: Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the hour.
7: बात है सर, क्या पर ये बात है।
5: Awesome.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Supported by Homes Are Us. We complete

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲਈ। ਅਬ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣੇਗਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਤਰੀਕਾ। नेम गेम खेलते हैं हम, जिसमें आप लोगों के नाम लिए जाते हैं और आपको बस क्या करना है 3311063 पर। जी हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम जो है वो लिख के भेजना है, नो हाय नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता नाम जो है वो होना चाहिए। वॉइस नोट भी मत भेजिएगा, ठीक है। एंड आप लोगों के अभी से मैसेजेस जो है वो आने स्टार्ट हो गए। चलिए अब मैं आप लोगों के नाम जो है वो बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। संगीता, फहाद, रूबी, आर्या, मोहम्मद, फातिमा यूसुफ, सौद आजमी, बंगेश, जावेद, रिफत, शामसुल हुसैन, आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, जावेद जी, निलोफर जी, वॉइस नोट मत भेजो दोस्त, मैं बोलते बोलते वॉइस नोट कैसे सुनूंगी। साहिल जी, बशीर जी, दीपक जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद यूसुफ जी, नारायण जी, मिस्टर अली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला दोस्त, फिर मत बोलना, नाम नहीं बोला। साहिल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इसक नसीम जी, थैंक यू सो मच। अंजू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फैजल जी, थैंक यू सो मच। और अपने जस्टिन जी, थैंक यू सो मच। फवाज जी, थैंक यू सो मच। मीरा जी, थैंक यू सो मच। इमेजिनरी नेम मत लिखिए क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, बेचारा किसी और का नाम रह जाता है। अदील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जो कि आपके मम्मी पापा ने आपका जो नाम रखा है ना वही नाम बोलिएगा। दीपक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अंजू जी, थैंक यू सो मच। सूरज जी, थैंक यू सो मच। फवाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। नोहा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब शाहीन जी, थैंक यू सो मच। नीजू जी, थैंक यू सो मच। अब जिन जिन लोगों के नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिखिए और अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो बना दीजिए। दनियाल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए।

भाई साहब क्या ही तो गाना है यार ये जितनी बार ये गाना चलता उतनी बार मैं इस गाने की तारीफ करनी जो है वो नहीं भूलती हूँ और मैं कह जी सोनियो के दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोड़े नाल अब मेरा गलती माने का टाइम आ चुका है लेकिन जाने से पहले मैच के बारे में बता देती हूँ चेन्नई ने पहले खेलते हुए 181 रन का टारगेट दिया हैदराबाद अभी खेल रही है 17 ओवर हो गए हैं 153 का स्कोर है 3 विकेट जा चुके हैं 18 बॉलों पर 28 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए दोस्त याद रखना

और बाकी का इश्क कल आपके लिए होगा और कल शाम को 5 बजे फिर से होती है जबरदस्त इवनिंग्स में मुलाकात. सो खाने में देरो ऐश कर देरो चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो.

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

If I ask, mention the best person you met in Qatar, तो किसका नाम लोगे? सबसे पहले जुबान पे किसका नाम आता है? Hey, this is me, RJ Akash, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में जनाब मैं आ गया हूँ आपके साथ इस शाम को और रंगीन और प्यारा ब्यूटीफुल सूटीफुल सा बनाने के लिए। जी हाँ, बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाने लेकर आए, लेकिन उन सबसे पहले आपका हाल तो जान लूं। भाई देखो, बिना मेहमान का हाल जाने बिना कि उसे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उसे ठंडा गर्म क्या चाहिए, ये जाने बिना बस उसको परोस देना भी तो सही नहीं है ना। तो इसलिए पहले मैं जनाब, मेहमान तो दूर की बात, आप तो अपने हैं, तो आपसे जानना चाह रहा था सब ठीक तो है ना। अगर ठीक नहीं भी है तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा झट से। कनेक्ट करो तो सही है मुझसे, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और अपने दिल की बात बेधड़क खोलो। याद रखो, जो बात तुम मुझसे शेयर करोगे वो कहीं नहीं जाएगी, कहोगे तो रेडियो पर भी नहीं आएगी, लेकिन शेयर जरूर करो, क्योंकि मन में भर के नहीं जीना है, मन भर के जीना है दोस्तों। और अभी फिलहाल इस प्यारे से गाने के साथ दिल भी कहेगा जियो बिंदास।

0: भाई वक्त बदल रहा है, जनरेशन जेंजी में बदल रही है, लेकिन ये क्या जेंजी जनरेशन भी इतनी ज्यादा मैच्योर हो पाएगी? सवाल तो जेंजी जनरेशन से है, क्योंकि पहले चलो भाई हम लोग मिलेनियर वाले लोग तो ये है कि फादर बन गए, जिम्मेदारी को अपना लिया, लेकिन जो जेंजी वाले हैं वो बेचारे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं।
1: रियल कहानी।
0: Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। और आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की उन रील्स के बारे में जिनमें डैडीज को बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाया जा रहा है। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं, साथ में कमेंट्स भी हैं। कमेंट्स तो भरे पड़े थे नीचे, जहाँ पे एक डैडी ऑफिस से आने के बाद अपने छोटे से बच्चे की केयर कर रहे होते हैं। वो जो नैनी रखी हुई होती है, नैनी को कहते हैं ओके नाउ यू कैन गो। नैनी को भेज कर बच्चे को खाना खिलाते हैं, डायपर चेंज करते हैं, और उनकी वाइफ जो कि नाइट शिफ्ट में होती है उसके लिए भी वो सुबह की तैयारी करके सोते हैं। मतलब कितने ज्यादा जिम्मेदार डैड हैं यार, नहीं बेचारे अबला नर। लेकिन मेरे को ऐसे यही जानना था कि डैड्स भी इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपको लगता है? क्या पापा अगर मम्मी की जगह लेने को कहा जाए, अदला बदली कर दी जाए, तो क्या पापा बच्चे को उसी पैम्पर तरीके से संभाल सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश। क्या आपके डैडी ने भी आपको कभी खोया कहीं पे और मम्मी ने उनको धोया कभी? आप आंसर कीजिए और अभी फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। जियो बिंदास।

फ्लैशबैक। तो कैसा होता ना, हम किसी को अपने डायलॉग्स जो हैं भाई वो कैसे एक्सप्रेस कर पाते। देखो, ये सवाल जिनजीज से नहीं था, ये 90s वालों से और खासकर 2000 के स्टार्टिंग स्टेज वालों से मेरा सवाल था, ये कैसे कर पाते आप ये सवाल का जवाब। हे, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। अभी तो फिलहाल मेरे मन में ये सवाल आया जनाब कि बॉलीवुड का वो गाना जो एक टाइम पे आपका एहसास था, गानों के थ्रू ना अपनी बातों को अपने एहसासों को बयां करना बहुत इजी हो जाता है, तो एक गाना जो कि याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से फिर जाने से जान। हाय, मैं पूरा नहीं गा सकता, गाने को आवाज भी इतनी खास नहीं है गाने में, तो इसलिए आप मुझे बताइए कौन सी मूवी का गाना है, जल्दी से मुझे बताइए और यादों को ताजा करिए और बताइएगा जरूर साथ में इस गाने को आप किसको डेडिकेट किया करते हैं या कभी किया है, तो जरूर शेयर कीजिएगा मुझे, उन लम्हों को वापस से रिफ्रेश करेंगे। अभी तो फिलहाल रिफ्रेश आपकी बहुत सारी मेमोरीज होने वाली है इस प्यारे से गाने के साथ जो मैं चलाने वाला हूँ, तो कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक ओनली ऑन रेडियो ऑल इफ टू यू बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

भाई वक्त वक्त की बात है, जो हीरो आज के टाइम पे आपको इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखते, पर बता दे जनाब, जवानी में उनका अपना अलग ही जलवा था। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल एफ पर मिडनाइट लाउंज के सफर में और बारी है

फ्लैशबैक। तो भाई गाना था याद आ रही है तेरी याद आ रही है, जब किसी की याद आती थी ना या अब भी आती है तो हम तो जनाब यही गाना आते हैं आज भी और यही गाना भेज देते हैं, चाहे लिख कर पूरा भेजना पड़े। नहीं आपकी तरह नहीं जेंजी लोग जो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिए नए गानों को और भेज दिया, गाने भी पूरे नहीं आते आपको तो। वैसे लिरिक्स में हालांकि मैं खुद कच्चा हूं लेकिन स्टिल मन का पक्का हूं, गाना यही गाता हूं। फिलहाल मैंने पूछा था कि कौन सी मूवी का गाना है, तो सबसे पहले मेरे पास आंसर आया है रहमान जी का। क्या बात है, ब्यूटीफुल नेम। तो रहमान जी लिखते हैं मुझे ये गाना, लव स्टोरी 1981 का है। वैसे मैं बता दूं कि जो इस मूवी के एक्टर रहे हैं लीड एक्टर कुमार गौरव, उनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त इतनी क्रेजी हो गई थी कि गर्ल्स उनकी फोटोज को लेटर्स और परफ्यूम्स के साथ भेजती थी। और सुनो, फिल्म के सॉन्ग्स इतने सुपरहिट हुए थे कि कैसेट शॉप्स के बाहर लाइंस लग कर लेने लग गए थे लोग। सच बताऊं 80s का रोमांस अलग ही लेवल का होता था, ना सोशल मीडिया ना डेटिंग एप्स, सिर्फ एक स्माइल और एक कैसेट पूरी लव स्टोरी शुरू कर देती थी। और आज भी याद आ रही है, जब भी चलते हैं ना जनाब दिल ऑटोमेटिकली रेट्रो मोड में चला जाता है। तो चलिए, वैसे आपके कौन से मूड ऑन्स हैं, रेट्रो या फिर जेंजी वाले, कोई भी हो, लेकिन फिलहाल जो करंट गाना चलने वाला है ना, ये आपको पहुंचा ही देगा उस लम्हे में जहां आप शायद इस गाने के साथ किसी को याद कर रहे थे या अपने इमोशंस को बयां कर रहे थे। साथ में गुनगुनाइए और दिल से कह जाइए जियो बिंदास।

0: ना हर कॉन्वर्जेशन एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, व्हाट्स योर नेम, और फिर धीरे धीरे वही बात आ जाती है ना, कॉन्टेक्ट में रहना।
1: डिजिटल डायरी।
0: Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल एफ पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। डिजिटल डायरी के पन्ने पे आज क्या लिखा है कि हमेशा कांटेक्ट में रहना यार। स्टार्टिंग तो उससे ही होती है ना, hey, what's your name? वैसे कुछ लोग लाइफ में स्ट्रेंजर्स बनकर आते हैं, पहले सिर्फ नाम पता होता है, फिर हैबिट्स, फिर फेवरेट सॉन्ग्स, लेट नाइट टॉक्स, और पता ही नहीं चलता कि कब वो अननोन पर्सन नोन पर्सन बनकर दिल के सबसे क्लोज आ जाता है। और फनी बात पता है क्या होती है, आजकल ना रिलेशनशिप्स के जर्नी भी कितना मतलब डिजिटली ट्रैवल कर रहे होते हैं, हाई से शुरू होते हैं, मीम्स शेयर करते करते फ्रेंडशिप में बदल जाते हैं, और एंड में भाई कांटेक्ट में रहना यार, हाँ ठीक है मिलते हैं कभी, हाँ तभी तो आज के लोग मिलने को इतना बार कहते हैं, और जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते सही से, फोन में लगे रहते हैं, और फोन में कुछ कर नहीं होते, बस वही जो मिलने से पहले कर रहे होते हैं, रील्स रूल्स। कभी कभी ना लोग चले भी जाते हैं लेकिन चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और उनकी टाइपिंग स्टाइल तक याद रह जाती है। नहीं, इसलिए कनेक्शंस को सिर्फ ऑनलाइन मत रखो, कुछ लोगों को टाइम भी दिया करो, क्योंकि हर कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला इंसान कनेक्शन नहीं होता, समझे? आरो वापस कहीं जाएगा नहीं। संतरे रेडियो वाले, और दिल से कहते रहिए जियो।

और कहानी तो जनाब मैं आपसे जानना चाह रहा था, बताइए मुझे आज आप एक कहानी, जब आपकी मैनेजर लीव पर रहे और आपकी बहुत अच्छी किसी से मुलाकात हुई या फिर बहुत अच्छा डे स्पेंड हुआ, कौन सी वो मेमोरी है जो आपको लगता है कि आपके जिस दिन मैनेजर नहीं आए थे उस दिन वो क्रिएट हुई, तो आज शेयर करेंगे आप मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरसे आकाश और बताइए वो मेमोरी, करिए वो कहानी शेयर जिस दिन आपके मैनेजर नहीं आए लेकिन आपके लिए वो दिन बहुत खास बन गया। देखा, मैनेजर हर किसी के लिए लकी होता ही नहीं है। फिलहाल अभी तो उनके लिए लकी है जिनकी सैलरीज मैनेजर इंक्रीज करा ही देते हैं, लेकिन मैनेजर साहब सबका ध्यान रखा कीजिए जैसे हम रखते हैं इनका उनका। अभी तो फिलहाल आपका, आपके लिए चला रहा बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल और कहते रहिए जियो बिंदास।

सूरतदार आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: हर कोई निभाना चाहता है, हर कोई हर किसी से कुछ कहना चाहता है, बस कहता है कि ठीक है इस बार और कर लेते हैं लास्ट टाइम, फिर देखा जाएगा। लेकिन सोने से पहले यही तो एक रिमाइंडर है, लास्ट टाइम, लेकिन कब क्या पता यही वो लास्ट टाइम।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप,
2: बिफोर यू स्लीप।
0: हे दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज में। और सोने से पहले जनाब ये जानना बहुत जरूरी है कि यू नेवर नो व्हेन समथिंग बिकम्स द लास्ट टाइम। सो वो एक लास्ट मुलाकात, द लास्ट टाइम, पता था क्या कि क्या पता वो लास्ट टाइम होगा? क्या वो आखिरी बार किसी से गुड नाइट कहके सोना किसी का वो पता था क्या? या किसी से गुड बाय कहके ये मिलना, देखते हैं फिर मिलेंगे, हाँ कॉन्टेक्ट में रहना, क्या कभी मिल पाए क्या? क्या वो आवाज वापस किसी की सुन पाए क्या? देखो इमोशनल करना या उन सेंटिमेंट्स को वापस से ठेस पहुंचाना मेरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है द लास्ट टाइम। यू नेवर नो व्हेन समथिंग बिकम्स द लास्ट टाइम, सो ऑलवेज केयर जो भी आपके पास है, चाहे वो इंसान या चीज, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन समथिंग बिकम्स द लास्ट टाइम। समझदार के लिए इशारा काफी है, फिलहाल जो ये मोमेंट है ये लास्ट है, ये कभी फिर नहीं आएगा, फिर नए मोमेंट्स आएंगे। तो इसलिए इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, लंबी सांस लीजिए, रुक कर फिर धीरे धीरे छोड़िए और इस लम्हे को एहसास लीजिए और फिर साथ में कहिए दिल से जियो बिंदास। वन लाइफ मैन, वन लाइफ। स्टे ट्यून्ड।

कुछ कॉन्वर्सेशंस खत्म हो जाती है पर उनके फील जो है ना वो दिल में काफी देर तक रह जाते हैं। दोस्तों वक्त हो गया है आपके इस दिल की आवाज का गुड बाय कहने का, लेकिन जाने से पहले बस एक छोटी सी बात। लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ सिर्फ नाम बनकर रह जाएंगे और कुछ मेमोरीज बनकर हमेशा साथ चलेंगे। आज की रात अगर किसी गाने ने आपको स्माइल दी हो, किसी बात ने नॉस्टैल्जिया फील करा दिया हो या किसी मेमोरी को सॉफ्टली टच किया हो, तो समझ लीजिएगा कि हमारी कनेक्शन और हमारी मेहनत दोनों सफल हुए। मैं हूं आपके दिल की आवाज आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में, और जाता जाता ब्यूटीफुल से ट्रैक्स आपके लगा के जा रहा हूं। तो कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM
4: हमें नंबर वन

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।